0: फोटों को सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: फोटों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन भूल

नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 10 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयास

0: वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों

0: प्रदेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2,200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1,600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है शुष्क खेती में जल संरक्षण, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण की। जल न केवल फसलों बल्कि सभी जीवों के लिए नितांत आवश्यक है, बल्कि पौधे की कई जैव रासायनिक क्रियाओं में भी जल भाग लेता है। इसके अभाव में पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यह एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से करने की आवश्यकता है। जल की सीमित उपलब्धता के कारण इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। पानी की कमी से फसल उत्पादन में भी गिरावट आती है। पानी का सही ढंग से उपयोग कर इसकी कमी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में उचित तरीकों से जल का प्रबंधन किया जाए तो इन क्षेत्रों से सिंचित क्षेत्रों के समान उत्पादन प्राप्त कर खाद्य उत्पादन को अधिक बढ़ाया जा सकता है। अतः वर्षा आधारित क्षेत्रों पर कृषि विकास करने के लिए आवश्यक है कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए जिनसे कि इन क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों की जल उपयोग क्षमता को बढ़ाया जा सके। इससे वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता होने पर भी फसल को जल की कमी से बचाया जा सकता है। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि उत्पादन को बढ़ते क्रम में बनाए रखने के लिए जल संरक्षण के उपायों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय जल की बढ़ती मांग की पूर्ति करने का एकमात्र उपाय उपलब्ध जल का लंबे समय तक संरक्षण करना है। किसान भाइयों, मृदा प्रबंधन कर जल को संरक्षित किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्र में वर्षा की मात्रा और वर्षा समय दोनों अल्प होते हैं। मृदा का इस प्रकार प्रबंधन किया जाना चाहिए कि मृदा में जल की उपलब्धता पौधों के लिए अधिक समय तक बनी रहे। उचित भूमि प्रबंधन द्वारा वर्षा जल को काफी मात्रा में संचय किया जा सकता है। 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर गहरी जुताई और वर्षा से पहले गर्मी में जुताई कर दी जाए तो भूमि अधिक मात्रा में पानी सोखती है। जुताई खेत के ढलान के समकोण पर करके जल बहाव में अवरोध उत्पन्न कर गति को कम कर सकते हैं। समुच्च जुताई के माध्यम से भी आप जल को अनावश्यक बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वर्षा जल जब मृदा की सतह पर संतृप्त होने के बाद जल अपवाह के रूप में ढलान के अनुरूप बहता है, तब ढलान के समानांतर जुताई कर जल अपवाह को कम कर सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी के द्वारा जल का अधिक अवशोषण किया जाता है और यह मिट्टी में नमी के रूप में बना रहता है। किसान भाइयों, खेतों में गहरी जुताई भी आवश्यक है। आगामी फसल की बुआई करने से पहले खेत की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके वर्षा जल मृदा द्वारा पर्याप्त मात्रा में अवशोषित कर लिया जाता है। इससे आगामी फसल के जल भाग की पूर्ति की जा सकती है। मानसून पूर्व खेत के चारों तरफ से मेड़बंदी और जुताई कर जल संरक्षण किया जा सकता है। असिंचित क्षेत्र की फसल वर्षा के जल पर ही आश्रित होती है, इसलिए यह फसल के लिए अमृत के समान होता है। किसान भाइयों, इसके साथ ही जल उपयोग में दक्षता बढ़ाने की जरूरत है। मेड़बंदी से वर्षा का जल अधिक समय तक मृदा सतह पर डूबने से पर्याप्त मात्रा में मृदा द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इससे फसलों द्वारा अधिक समय तक जल की पूर्ति की जा सकती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, ढाल के समकोण में जुताई भी अति आवश्यक है। खेत में ढाल का प्रतिशत अधिक है तो ढाल के समकोण में जुताई करके जल के बहाव का नियंत्रण कर सकते हैं। इससे वर्षा का जल खेत में अधिक गहराई तक अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार नालियों का पानी खेत में अधिक समय तक ठहरेगा, इससे भूमि में जल की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि होगी। किसान भाइयों, फसल उत्पादन के लिए शुष्क क्षेत्रों में ऐसी सस्यन की विधियां और फसलों के समावेश को बढ़ाने की

0: आवश्यकता है जो वर्षा द्वारा प्राप्त जल में भरपूर उत्पादन देने में सफल हो। फसलों का चयन क्षेत्र की मिट्टी के प्रकार और उर्वरता के अनुरूप होना चाहिए। इससे शुष्क दशा में फसल पौध अपना जीवन काल बिना जल की कमी के पूर्ण कर सकेगा। किसान भाइयों, शुष्क क्षेत्र में फसलों का चयन काफी मायने रखता है। वर्षा जल की कमी के कारण शुष्क क्षेत्र पर फसल उत्पादन में कमी फसल आधारित भी होती है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः मक्का, ज्वार, अरहर, बाजरा, कपास जैसी फसल उगाकर अधिक जल मांग वाली फसलों की अपेक्षा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी फसलें अपने गहरे और विस्तृत जड़ संरचना के कारण जल का उपयोग विपरीत परिस्थिति में भी कर पाने में सफल होती है। किसान भाइयों, इसके साथ ही फसल चक्र, जैविक खेती और मिश्रित खेती को अपनाकर शुष्क क्षेत्र में उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें बस यहीं तक दीजिए। अब हमें आज्ञा, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था शुष्क खेती में जल संरक्षण, संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान।

अपने स्वामी के साथ रहकर वन प्रवास के सारे कष्ट सीता जी की कल्पना में उस पीड़ा से कम दुखदाई होंगे जो पति के वियोग में अयोध्या में झेलनी होगी। यदि श्री राम से 14 वर्षों तक अलग उन्हें अयोध्या में रखा गया तो निश्चित ही वो जीवित नहीं रह सकेंगी। भला स्वामी को वनवास का कठिन जीवन और उन्हें राजमहलों का भोग विलास उचित है? सीता जी ने अत्यधिक व्याकुल होकर ये वचन कहे। पति वियोग की वो कल्पना तक नहीं कर सकती। सीता जी की विकलता देख श्री राम का ये विचार दृढ़ हो गया कि हठ पूर्वक उन्हें अयोध्या में छोड़ देने से वो जीवित नहीं रह सकेंगी। अतः उन्होंने सीता जी को विषाद भूलकर वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाने की अनुमति दे दी। माता के चरण छूकर श्री राम ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पुत्र को कातर नेत्रों से देखते हुए माता अधीर हो गईं। जब सीता जी ने सास के चरण छुए तो उन्हें हृदय से लगाकर सास ने आशीष दिया, जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है शिक्षा का उद्देश्य, संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करना और उन्हें आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना है। स्कूल में दाखिला लेने के बाद एक विद्यार्थी अपने स्कूल की पुस्तकों से, शिक्षकों से, स्कूल के वातावरण, सहपाठियों से बहुत कुछ सीखता है। शिक्षा के उद्देश्य दूसरों पर विचार थोपना नहीं है, न ही किसी को कष्ट अथवा दंड देना है। जब शिक्षा दंड बन जाती है तो छात्रों में अनुशासनहीनता और विद्रोही प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इसके फलस्वरूप छात्र आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के लिए भावी नागरिकों को श्रेष्ठ तथा स्वस्थ बनाना है। ऐसे ही नागरिक आगे चलकर हमारे राष्ट्र को उन्नत और समृद्ध बना सकते हैं। वास्तविक शिक्षा वही है जो व्यक्ति को सभी प्रकार के अंधकारों और बंधनों से मुक्त करती है। असल में शिक्षा मनुष्य को असत्य और अपवित्रता से मुक्त करती है। वह मनुष्य के विवेक को जागृत करके उसे बुद्धिमान बना देती है। शिक्षित होकर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। उसे धन कमाकर अपनी और अपने परिवार की आजीविका चलाने की समझ आ जाती है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा किसी मनुष्य को सामाजिक व्यवहार श्रेष्ठ तरीके से करना सिखलाती है। शिक्षित होकर ही व्यक्ति देश की मुख्य धारा से सही रूप से जुड़ता है और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी निभाता है। देश के महापुरुषों ने भी कहा है कि आज का विद्यार्थी ही कल का देश का भावी नागरिक बनेगा। उन्हें उन सब की सुरक्षा करनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे निर्भीकता के साथ समाज की बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करें। शिक्षा व्यक्ति को बंधनों से मुक्त करती है और हृदय की संकीर्णताओं से भी मुक्ति दिलाती है। धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, वर्ग, प्रांत, इन सब के भेदभावों से मुक्ति दिलाना शिक्षा का ही उद्देश्य है। श्रेष्ठ शिक्षा सभी जीवों के प्रति दया भाव सिखलाती है। शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों के अंदर सद्गुणों का विकास करना, दुखी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, दुष्ट प्राणियों के प्रति मध्यस्थता का भाव बनाए रखना। संसार में व्याप्त निक्षरता और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए

शिक्षा के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। इससे मनुष्य को जो ज्ञान, विवेक और समझदारी मिलती है, उसकी पग पग पर जरूरत पड़ती है। शिक्षा हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा की आवश्यकता आज के समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को है। शिक्षा का मतलब ढेर सारी पुस्तकों का भार विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर लाद देना नहीं है, बल्कि हर एक विद्यार्थी को बेहतर या श्रेष्ठ जीवन जीने योग्य बनाना है। इसलिए व्यावहारिक शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक बनती है। यह मनुष्य के जीवन साथी की तरह है, जो एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद जीवन भर उसे सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऐसे भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्माप्रोति, धनात् धर्म ततः सुखम। यानी विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय था शिक्षा का उद्देश्य। संकलन एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल के गाए चंद भक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज हम आपको अनुराधा पौडवाल के गाए आरती सुनवा रहे थे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है कृत्रिम दांत और देखभाल। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर विष्णुपति सिंह और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दांतों की समस्या से हर लोगों को गुजरना पड़ता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या हमारे वृद्धजन हों। किसी कारण से दांत सड़ जाती है और हमें दांतों को निकालना पड़ता है और इसके एवज में हमें नकली दांत, जिसे हम कृत्रिम दांत कहते हैं या आर्टिफिशियल टीथ कहते हैं, वो हमें लगानी पड़ती है। तो इसी संबंध में आज हम चर्चा करेंगे कि जो नकली दांत है या कृत्रिम दांत है किस तरह का होता है, उसकी देखरेख कैसे करें ताकि जो कृत्रिम दांत है उसकी उम्र लंबी हो और आपको किसी तरह की भविष्य में समस्या नहीं हो। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं रिम्स के सह प्राध्यापक दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विष्णुपति सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, दांतों से समस्या हर लोगों को होती है, तो हम बात करें कृत्रिम दांतों की। तो कृत्रिम दांत कितने तरह की होती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कृत्रिम दांत लगवाने के समय में?
2: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कृत्रिम दांत होते हैं या आर्टिफिशियल टीथ जिसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो मुख्यतः दो तरीके का बनाया जा सकता है। एक तो होता है फिक्स्ड दांत, जो कि आपके मुंह में बचे हुए दांतों से सपोर्ट ले करके जो प्रोस्थेसिस बनती है और जिसे हम अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते हैं, वो एक फिक्स्ड तरीके की विधि हो गई और फिक्स्ड प्रोस्थेसिस उसे बोलते हैं। और दूसरे तरीके का जो दांत का रिप्लेसमेंट होता है, कृत्रिम दांत जो बनते हैं, वो होता है एक रिमूवेबल मींस, मतलब उसको बनने के बाद पहनाया तो डॉक्टर के द्वारा ही जाता है लेकिन मरीज अपनी सुविधा के अनुसार उसे बाहर निकाल सकता है अपने मुख से और एक प्लास्टिक के बंद डब्बे में पानी में उसे रख सकता है। फिक्स्ड में ही दो तीन ऑप्शंस और होते हैं जो आजकल एक नया तरीका है दांतों को मुंह में फिक्स तरीके से लगाने का, उसको इम्प्लांट्स भी बोलते हैं। एक डेंटल इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है जो हड्डी के अंदर हम उसे ड्रिल करके डालते हैं और उसके ऊपर हम आर्टिफिशियल टीथ बनाते हैं, तो ये भी एक फिक्स्ड उपाय है दांतों को रिप्लेस करने का।
1: किसी साथी की एक दांत खराब हो या उसकी पूरी दांत खराब हो गई हो तो वो कैसे देख रेख करे, क्या उपाय करें कि उसकी 32 दांत पूरी तरह से कृत्रिम रूप से लग जाए और उसकी देखरेख सही से करते रहे और उसका खान पान सही से होता रहे?
2: मुख्यतः हमें ध्यान ये देना है कि दांतों की परेशानी की जब शुरुआत हो तभी हमें सचेत हो जाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये दर्द नहीं कर होता, दांत की दर्द से पाप परेशान नहीं होते हैं, मामूली सी कुछ दिक्कत होती है तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे अन्य रोगों के साथ भी करते हैं कि हम उसे बहुत सीरियसली तब लेते हैं जब हम उससे परेशान होने लगते हैं। तो जैसे पायरिया के शुरुआती लक्षण हैं कि अगर आपके मुंह से ब्रश करते टाइम खून आने लगे या जब आप बात करते हो किसी से और आपकी सांसों में दुर्गंध आने लगे, तो ऐसी शुरुआती लक्षण हमें बताते हैं कि हम प्रायरिया की तरफ अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें एक अच्छी डेंटिस्ट के पास जाके जांच करानी चाहिए और प्रायरिया का पूर्णतः इलाज आज संभव है। दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद अब उसकी एडवांस सर्जरी भी होती है और ये सब करके हम दांतों को बहुत अच्छा रख सकते हैं और उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें कृत्रिम दांतों की आवश्यकता ही ना हो, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट कभी भी जो नेचुरल टीथ हमें भगवान के द्वारा दिया गया है उसका रिप्लेसमेंट कभी नहीं कर सकता, वो
1: उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
2: वो उसके बहुत नज़दीक जाता है और उसके फंक्शंस, उसके एस्थेटिक और उसके बाकी सारे चीज़ों का वो रूप ले लेता है, बट हूबहू नेचुरल टीथ जैसा कुछ हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। तो हमें देख रेख तो बहुत अच्छे से करना चाहिए अपने नेचुरल दांतों का, और शुरुआती लक्षण दिखते ही दांतों में सड़न का, खाने का फंसना या बदबू आना, ब्रश करते टाइम खून आना, तो हमें एक उपयुक्त डेंटिस्ट के पास जा कर के इसकी सलाह मशवरा करना चाहिए इससे संबंधित, और इसकी देख रेख करके हमें इसकी लाइफ को बढ़ा लेना चाहिए
1: जी।
2: ब्रशिंग हमें सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए, ये बार बार बोला जाता है और लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो रात का ब्रशिंग भी उतना ही ज़रूरी है जितना सुबह का ब्रशिंग ज़रूरी है, क्योंकि रात को अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो क्या है, आप सो जाते हैं और लगभग 10-12 घंटे का समय आप मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको देते हैं, खाने के ऊपर वो बैठते हैं, जो भी खाना दांतों में लगा हुआ है, फिर वो एसिड प्रोड्यूस करता है और फिर वो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रात को ब्रश करें, दिन को तो करना आवश्यक है ही, बट रात को ब्रश करना उतना ही आवश्यक है। तो खाने के बाद जैसे थोड़ा सा कुल्ला कर लिया, क्योंकि एक अच्छी ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करने से निश्चित तौर पे ज़्यादा फ़ायदा होगा उसके मुकाबले जो आप अगर अच्छी ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हो और उस तरीके से ब्रश करते हो।
1: डॉक्टर साहब, हम थोड़ी खर्च की बात करें, कृत्रिम दांत हम लगवाते हैं चाहे एक हो चाहे पूरी दांत हम लगवाते हैं, तो खर्च कितना आता है और आपके यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी?
2: मैं आपके रेडियो के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को सूचित करना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्टोरोंटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं वो मुफ्त में बनते हैं और रिमूवेबल दांत की सुविधा भी उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात है जो 32 बनती है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं किसी कारणवश जिनके मुंह में अब एक भी दांत नहीं है या 4-5 दांत बच गए हैं, वो हिलते डुलते अवस्था में हैं, उनसे वो अपने खान पान को सही ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, तो वैसे 4-5 दांतों को निकाल करके पूरी की पूरी 32 रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में बनती है और वो मुफ्त में बनती है। तो मैं तो चाहूँगा कि जो कोई भी लोग जिनको ज़रूरत हो 32 बनाने की तो वो रिम्स में आए, 5 अपॉइंटमेंट विजिट होता है, नकली दांत बनाने का जो 32 बनती है वो 5 अपॉइंटमेंट में बनती है और एक एक दो दो दिन के अंतराल पे हम अपॉइंटमेंट देते हैं और लगभग 15-20 दिनों में आपको कृत्रिम दांत जो 32 है वो बन के तैयार हो जाती है। तो प्राइवेट में तो बहुत इसका कॉस्ट है, तो उसके डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये मैं बताना चाहूँगा कि रिम्स के प्रोस्थेटिक्स विभाग में जो कृत्रिम दांत हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, या तो 32 हो या 5-7 दांत नहीं हो, 8 दांत नहीं हो, 10 दांत नहीं हो, बिल्कुल मुफ्त में बनता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है, सक्षम डॉक्टरों के द्वारा बनाया जाता है जो विशेषज्ञ होते हैं इसी पर्टिकुलर फील्ड के, उसको हम प्रोस्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। तो ये सुविधा तो रिम्स में अब उपलब्ध है।
1: तो दोस्तों, यदि दांतों की कोई भी समस्या हो तो चाहे आपको दांत नकली लगवानी हो, रिम्स में आप चले जाएं, बिल्कुल निशुल्क सेवा आपको दी जाएगी, एक पैसे भी नहीं लगेंगे, और यही सेवा आप यदि बाहर किसी निजी चिकित्सक के पास जाते हैं, निजी डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो इस सुविधा का लाभ उठाइए और डॉक्टर साहब मसूड़े चमकते रहे, मोती जैसे चमचम करते रहे आपके दांतें, क्या कहेंगे अपने सुनने वाले साथियों को?
2: दांत अगर आपके किसी कारण गिर गए हो तो तुरंत ही उसका रिप्लेसमेंट जरूर कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता बट धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा डाइट का रिप्लेसमेंट हो जाता है, बहुत कड़े चीज़ जो आप अपने नेचुरल टीथ से खा सकते थे, अब धीरे धीरे अगर आपके मुंह के अंदर दांत कम होने लगते हैं तो आप वो अपने पसंदीदा भोजन का सेवन नहीं कर पाते हैं और इससे फिर आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है, और चूँकि ये सब इतना धीरे धीरे हो रहा होता है कि जब तक वो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से परेशान करता है तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है, आपका वज़न घट जाता है और आप बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द होल बॉडी, कभी कभी हम मुंह के अंदर झांक के शरीर की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग हैं, आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो किसी तरीके की सेवा की तो आप रिम्स में आ सकते हैं, डेंटल में, और हर तरीके की सुविधा वहाँ पे आपको उपलब्ध है।
1: तो मित्रों, यदि आपके दांत मोती जैसे चमकते हैं, स्वस्थ हैं, तो यदि दांत स्वस्थ रहेंगे तो आप खूबसूरत दिखेंगे, आपका चांद जैसा चेहरा दिखाएगा और आपका व्यक्तित्व भी उतना ही प्रभावशाली होगा। तो डॉक्टर विष्णुपति सिंह, सह प्राध्यापक रिम्स, आज आप इस कार्यक्रम में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में, कृत्रिम दांत और देखभाल इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर विष्णुपति सिंह। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमम् च चरणम् सफलतया सम्पाद्य इटलीदेशात् नवदिल्लीम् प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहनक्षेत्रेषु नौकापत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य, आधारभूतसंरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीनसभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिककूटनीतिं च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिकसम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणाञ्च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति, तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7वादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं 6वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीय सञ्चेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामिदिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आन्ध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखण्डे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति 20 प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 4 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली

0: overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest, that is 45 runs, while Rovman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए शेष बचे हुए कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपको दे दें। अभी से थोड़ी देर के बाद यानी 7:15 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको गायन सुनवाएंगे। राग होगा कबीरी भैरव और कलाकार होंगी श्रीमती गोंडुताई कुलकर्णी। 7:45 पर आप सुनेंगे गीत एवं गजलों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार होंगे उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू। खेल विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी के, संयोजन श्री एस के लाल की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार। 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफ़र आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार सुनेंगे आप हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर सदाबहार नगमे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से, 4:02 पर हेलो फरमाइश विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार 5:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी। शाम 5:35 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम होगा युवाणी। 6:00 प्रादेशिक समाचार का समय होगा, जिसे हम रिले करेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी। 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 7:15 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम उजाले की ओर। 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सरहदे। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10:00 फिल्मी

गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11 बजे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा दिल्ली केंद्र से, और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको गायन सुनवा रहे हैं। राग है कबीरी भैरव और कलाकार है श्रीमती गुंडुताई कुलकर्णी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में गायन। राग था कबीरी भैरव और कलाकार थी श्रीमती गोंडूताई कुलकर्णी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फ़नकार थे उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातरेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति बद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते

0: क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
4: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
0: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
5: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की

0: यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: message shared ahead of his visit, Mr. Rubio said that India is the world's largest democracy and US is world's oldest. So the US looks forward to celebrating it together. US Embassy in India also shared the video. President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai last evening on a four-day official visit to India. In a social media post, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranadhir Jaiswal, said, President Christodoulidis' visit highlights the growing momentum of India-Cyprus partnership and both the nations share time-tested and close relations rooted in shared values and strong people-to-people ties. The state visit comes at a moment when Cyprus holds the presidency of the Council of the European Union. Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay will expand his cabinet today. Rajesh Kumar, leader of Congress Legislature Party, and P. Vishwanathan, Melur MLA, will be inducted into the cabinet. This is the first time after 1967 that the Congress members will join the state cabinet. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Mumbai Indians by 4 wickets at their home ground, Eden Gardens, last night to keep playoff hopes alive. Chasing a target of 148 runs in a rain-affected match, Kolkata Knight Riders overhauled the target with 4 wickets in hand and 7 balls to go. Manish Pandey scored highest 45 runs, while Raman Powell contributed 40 runs in the chase. In today's fixture, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already qualified for the playoffs, while Chennai Super Kings are eyeing for the fourth spot in the points table. India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for heat wave conditions today at places over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also likely to prevail during the day over parts of Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Vidarbha. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Saira. Prime Minister's visit to Italy is widely noticed by the press today, along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum, and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap, strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express, in an exclusive, writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
0: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Centre ropes in major social media platforms to crack down on rumours and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani Ranchi se prastut hai pradeshik samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में उग्रवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। कोल्हान के सारंडा जंगलों में सक्रिय नक्सलियों के एक बड़े समूह ने हथियार डाल दिए हैं। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: झारखंड के नक्सल इतिहास में आज सबसे बड़ा सरेंडर होने जा रहा है। शीर्ष नक्सली कमांडर मिसिर बेसरा के दस्ते से जुड़े नक्सलियों के एक बड़े समूह ने सुरक्षा बलों के सामने घने जंगलों में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच रांची लाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी और महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी पुलिस को सौंपे हैं। आज सुबह रांची पुलिस मुख्यालय में डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इनका विधिवत आत्मसमर्पण कराया जाएगा। इस सामूहिक सरेंडर से सारंडा इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर पूरी तरह टूट गई है, जिससे राज्य में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने और रेट रिवीजन के लिए जानबूझकर काम लटकाने वालों के जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने गुणवत्ता से समझौता न करने और विधायकों के शिकायतों पर तुरंत जमीनी कार्रवाई का निर्देश दिया।
4: ग्रामीण विकास में मेनली जिन चीजों की समीक्षा की गई वो मनरेगा संबंधित, अब वो आवास को लेकर के है, आवास की अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा सपोर्टेड है, जेएसएलपीएस की गतिविधियां और वाटरशेड को लेकर के यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। और इन सभी कामों में हम लोगों ने प्राथमिकता इस बात को देने को कहा है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
2: रांची में आज और कल कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन आज राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जबकि कल समापन सत्र में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शामिल होंगे। रांची में आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव 2026 में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि कंपनियां सीएसआर राशि का उपयोग फैक्ट्री और माइंस प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए करें। उन्होंने इसकी निगरानी के लिए एक विशेष सेल बनाने की भी घोषणा की।
5: जो सीएसआर का पैसा दूसरे जगह यूज करता है, गर्दा हम खाते हैं, संकट हम झेलते हैं, जमीन हमारी जाता है और इसका नियंत्रण जो है कोई और करता है और इस पैसा को दूसरे देश में, दूसरे राज्य में खर्चा किया जाता है, लेकिन हमको राज्य के हित में भी देखना है और उसको कैसे बेहतर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अधिक से अधिक पैसा कैसे हम उस इलाके में खर्चा कर सकते हैं जहाँ फैक्ट्रीज है, जहाँ उद्योग है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज जो है पहला मीटिंग किए हैं।
2: बैठक में यूनिसेफ, टाटा फाउंडेशन और सीसीएल के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना तथा वन आधारित और सर्कुलर इकोनॉमी के अवसरों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। इस अवसर पर प्रधान सचिव अबू बकर सिद्दीकी और जीआईआई

0: ईडीसीओ के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज रांची में मीडिया कर्मियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में सुबह 11:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से आगामी 23 मई को सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड इलेक्टर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अपने बूथ पर जाकर नाम की जांच कर सकेंगे। उधर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और जिला प्रशासन के सहयोग से जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में एक विशेष मतदाता और आधार कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कैंप का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और आम लोगों को चुनावी व पहचान दस्तावेजों से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था।
1: तैयार का मैपिंग हो रहा है, वोटर आईडी और आधार जो है नए जिसको बनाना है नए बन रहे हैं, अगर कुछ करेक्शंस है तो करेक्शंस हो रहे हैं। 2 साल बाद आज हम लोग ने ये कैंप लगाया है और हमारे मेंबर्स की और लोगों की डिमांड थी कि वोटर आईडी का करेक्शन कराना है, आधार में बहुत से करेक्शंस है और खासकर मैपिंग जो है वो बहुत जरूरी है। जो पहले किसी कंस्टिट्यूएंसी में थे अभी चेंज हो गया है उनका कंस्टिट्यूएंसी, तो अभी SIR मैपिंग कराना मस्ट हो गया है।
0: सीबीआई की धनबाद टीम ने GCST के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है। हजारीबाग पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी दुर्गा बेदिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि 9 मामलों में फरार चल रहे इस उग्रवादी को गिद्दी थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोर्रा थाना क्षेत्र के एक होटल में छापेमारी कर अवैध देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां कल पलामू 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। रांची समेत 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आज 5 जिलों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा और गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज जमशेदपुर FC JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओडिशा FC के खिलाफ अपना अंतिम लीग मुकाबला खेलेगी। लीग टाइटल की दौड़ में बने रहने के लिए जमशेदपुर FC को यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम फिलहाल 12 मैचों में 21 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू के हवाले से लिखा है, राज्य में 4-5 एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आज सबसे बड़ा सरेंडर, 25 नक्सली डालेंगे हथियार। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में। दैनिक जागरण लिखता है 7 ट्रेनों में स्थायी रूप से बढ़ेंगे 20 अतिरिक्त कोच, 2 और

तथा आर्मी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। रांची पुलिस मुख्यालय में आज माओवादियों का एक बड़ा समूह करेगा आत्मसमर्पण। राज्य सरकार का सड़क निर्माण में देरी पर सख्त रुख। ग्रामीण विकास मंत्री ने दिए रेट रिवीजन, खेल की जांच और लापरवाह ठेकेदारों को डिबार करने के आदेश। राज्य सरकार और एक्सएलआरआई जमशेदपुर के बीच राज्य में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए एमओयू। नए उद्यमियों को मिलेगी सीड फंडिंग और विश्व स्तरीय मेंटरशिप। राज्य में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। पलामू में पारा 43.4 डिग्री के पार। आज रांची समेत कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम जमशेदपुर एफसी और ओडिशा एफसी के बीच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा खिताबी जंग का अंतिम लीग मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: हम आकाशवाणी
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर के आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है हीरो, आवाज़ रेशमा की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को फिल्म मेरी जंग में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है राम लखन, आवाज़ मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की है।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। सच्चे सपने वही होते हैं दोस्तों जिनके लिए इंसान मेहनत करता है। बड़े लक्ष्य हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और मेहनत करने के लिए उत्साहित करते हैं। अब आइए सुनते हैं एक प्यार।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। अगर टेम्परेचर को देखें तो आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कल का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो कल का टेम्परेचर भी 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 43% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 6:32 पर और कल सूर्योदय का समय होगा 5:09 पर। गर्मी अपने पीक पे है तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और घर से निकलना हो तो पानी पीकर ज़रूर निकलें। अगर रास्ते में कहीं प्यास लगे तो सत्तू वगैरह ज़रूर पीते रहें और अपना ख्याल रखें, साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें। और सुने ये प्यारा सा गीत।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: फसा अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं।

कार्यक्रम जोहार पलामू। आइए आज बात करते हैं सेहतनामा में सुपर फूड के बारे में। आखिर ये सुपर फूड है क्या? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए केवल पेट भरना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शरीर को सही पोषण देना भी बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि सुपर फूड का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। सुपर फूड ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर को ताकत देने के साथ साथ कई बीमारियों से बचने में भी मदद करते हैं। सुपर फूड क्यों ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए? ये हमें भरपूर ऊर्जा देता है। सुपर फूड शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा बनाए रखते हैं, जैसे कि केला, सूखे मेवे, ओट्स, सत्तू। इनसे शरीर जल्दी थकता नहीं है और दिन भर काम करने की क्षमता बनी रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फल, हरी सब्जियां, हल्दी, आंवला, दही जैसे सुपर फूड इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाते हैं। दिल को स्वस्थ रखते हैं। अलसी, अखरोट, ओमेगा 3 युक्त भोजन और हरी सब्जियां हृदय के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं। फाइबर से भरपूर सुपर फूड जैसे ओट्स, दालें, फल और सलाद पेट को साफ रखते हैं। इनमें कब्ज जैसे और गैस इत्यादि को होने में नहीं होने देते हैं। त्वचा और बालों की सुंदरता बनाए रखते हैं। आंवला, नारियल, पानी, बादाम, हरी सब्जियां शरीर को अंदर से पोषण देती हैं और ये त्वचा की चमक और बालों की मजबूती प्रदान करते हैं। दिमाग को तेज करते हैं। अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज और फल दिमाग की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं और ये याददाश्त की एकाग्रता को भी बढ़ाते हैं। कुछ सुपर फूड हैं, उनके फ़ायदे जानते हैं। जैसे आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बाल और त्वचा के लिए लाभकारी होता है। सत्तू गर्मियों में शरीर को ठंडक देता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन में भी सहायक होता है। सूखे मेवे दिमाग और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, शरीर को हेल्दी फैट और प्रोटीन देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं, खून बढ़ाने और कमजोरी दूर करने में मददगार होती हैं। और इनका सही तरीका क्या है खाने का? तो ताजे और प्राकृतिक भोजन को ही प्राथमिकता दें। रोजाना अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाएं। अधिक तला भुना पैकेट वाला भोजन कम कर दें। पर्याप्त पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन सब बातों का ख्याल रख के भी अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अपने आप को आपको कैसे स्वस्थ रखना है, लू से बचाना है, इसके लिए मैं एक उपाय बता रही हूँ। अब उपाय ये है कि आपको सौंफ का शरबत बनाना है। अभी ये सौंफ का शरबत कैसे बनता है, तो कुछ नहीं, 2 चम्मच सौंफ लेना है, उसमें 1 चुटकी जीरा ले और 8 से 10 पत्ते आपको लेना है पुदीने के, और इन्हें मिक्सी के जार में पीस लें या फिर आपको जैसे पीसना हो उसे पीस लें। शरबत बनाएं, चीनी पानी का घोल बनाएं, उसमें इसको डालें, छानें और पी लें। ये आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगा ही, साथ साथ मुंह की ताजगी भी बनाए रखता है और तरोताज़ा आपको फील जरूर करवाएगा। आप इस शरबत को बना करके पिए और देखिए कि क्या असर होता है। कार्यक्रम जोहार पलामू में आज के लिए इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दे, नमस्कार और सुनते रहें ये प्यारा सा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
0: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
2: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
0: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
2: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
2: वो ऐसे कि

0: यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं, और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है।
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया, चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
3: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: राम जी, अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद

0: आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी?
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: हम तुम खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते, और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ,
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
8: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
9: अरे वाह अटकू मटकू,
4: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
10: पेड़ हमारे
11: दोस्त हैं।
10: जीवन में हरियाली लाओ,
11: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
2: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का।
12: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनाधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्ट मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनः मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और कांचीपुरम विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह लगभग इसी समय लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार को कांग्रेस के 5 विधायक, वीसीके, आईयूएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम के 2-2 विधायक और एसपी वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के 22 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: क्या बात है। और जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होना जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर। तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ,
0: नबील था
1: नबील, नबील
0: जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी, जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था, तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पर आता था गजल का, आरोही। हाँ,
0: आरोही
1: तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ, तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था,
0: अरे
1: नीचे
0: बाप रे।
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद इन
0: आरोही
1: दो
0: में
1: घंटा
0: गाया।
1: रहा, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो वो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ,
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है

0: का राइटर था,
1: हाँ,
0: सीरियल
1: बिल्कुल
0: नंबर,
1: बिल्कुल,
0: और
1: बड़ा नाम है अजय
0: हाँ,
1: कार्तिक जी।
0: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने मेरा ये कमेंट था।
1: जी
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज उधास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
1: जी
0: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहाँ पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहाँ गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया,
1: हाँ बिल्कुल
0: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया, या कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया। हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर उन्होंने 3 बार ये सुना, और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए मंजूर साहब उनसे मिले, तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
1: जी,
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह
0: तो ये
1: वाह,
0: मजरूह
1: मजरू जैसे
0: सुल्तानपुरी साहब का
1: बड़े
0: आशीर्वाद था,
1: शायर की बात
0: है
1: है
0: ना,
1: ये,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं अब।
0: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है,
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर
1: मशहूर।
0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था, मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर
1: रहे थे,
0: जी
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजित एक्टर,
0: जी
1: और भी और कई थे फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
0: अलग
1: सेंटर
0: ही
1: के
0: होता
1: मुशायरा अलग
0: था
1: ही हुआ करता था,
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए
0: अरे
1: तो
0: बाप रे,
1: शुरुआत के एक दो इशारों में,
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला कि मेरा पहला मुशायरा, और ये ऑडियंस, ये लोग है
0: जी
1: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
0: अरे अब
1: मतलब
0: तो
1: ये
0: शुरुआत कर रहे थे जबकि
1: हाँ
0: जी।
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे
1: मतलब
0: बाप रे, बहुत बड़ी बात है
1: ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये जो मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
0: गजब
1: घर पर, फिर
0: जी
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूं जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को भी बहुत पसंद थी,
0: हाँ
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ
1: आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले

0: वो नहीं रहे
1: चले
0: दुनिया
1: गए।
0: में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: चले गए,
1: जी
0: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे।
1: जी
0: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूं कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
1: जी
0: और दूसरी आसमान से आगे।
1: बिल्कुल
0: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें। हाँ, तो मैं
1: बिल्कुल
0: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो? मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
1: जी।
0: तो किताब लेके और रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
1: रिबन
0: वो कर दिया,
1: खोला
0: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया और तालियां वालियाँ सब हो गई और मैं स्टेज से उतरने लगा।
1: जी।
0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
1: हाँ
0: पूरा,
1: बाकायदा और पूरा
0: हाँ
1: हॉल
0: पूरा
1: भरा हुआ
0: हॉल
1: है।
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
1: अरे
0: स्टैंडिंग
1: बाप रे।
0: माइक दीजिए। हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे।
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब
1: जी
0: उनको
1: जी
0: पसंद थी गजल, तो सारे तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वहीं खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब।
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
1: जी जी
0: आज
1: जी
0: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
1: गजब गजब।
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
1: अद्भुत
0: ये
1: अद्भुत।
0: अद्भुत अद्भुत। तो और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप, मुझे
1: अरे
0: क्यों नहीं
1: बाप
0: लगे,
1: रे यार, ये तो
0: और
1: बड़ा
0: आपको
1: मिस
0: मालूम
1: हुआ।
0: था कि ऐसा होगा वैसा होगा? तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बता दी। तो ये था उनका प्यार,
1: वाह
0: ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया था।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ, जान

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस
1: क्या बात है,
0: आसमान
1: बाकी है।
0: बाकी है। जाने कितनी उड़ान बाकी है। रुसल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूं,
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहां उनके जिनके

क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि

0: आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे, उजाले
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों के।
0: यादों के, मंथन जैसे कार्यक्रम थे, मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
0: बिल्कुल
1: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा। तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी जी,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
0: सब
1: से।
0: चीजों को
1: हाँ,
0: संभालते
1: सब कुछ सब संभालते थे।
0: थे
1: तो एक अच्छी टीम थी
0: जी,
1: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
0: बिल्कुल
1: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
0: जी
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल, और हर
1: ऐसा कम
0: रोज आप
1: होता
0: एक
1: है,
0: नई चुनौती
1: ऐसा
0: सामने
1: कम
0: रखते
1: होता
0: थे
1: है।
0: जी।
1: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा है और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
0: नौशाद
1: साथ
0: साहब आ रहे,
1: कहीं,
0: खयाम साहब आ
1: हाँ,
0: रहे
1: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
0: जी,
1: आनंद जी आए, है
0: बिल्कुल
1: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
0: बिल्कुल,
1: सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
0: रवि जी
1: ना,
0: आए,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: खयाम साहब,
0: खयाम साहब आए, और
1: हाँ
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा
1: हाँ
0: है
1: तो बड़े
0: हाँ
1: बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: मुझे याद है कि
1: हमारे
0: खयाम
1: मेहमान,
0: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
1: हाँ
0: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
1: हाँ उनको
0: है
1: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था, वो
0: जी
1: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का, और
0: बिल्कुल
1: उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया न करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया उनको, कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
0: ज्यादा
1: उनके
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: थे
1: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग
0: जी,
1: अब कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में। तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
0: किसी
1: है,
0: के पास नहीं
1: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशंस पे है,
0: जी,
1: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो हैं, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
0: बिल्कुल
1: गानों पे बातें हो रही हैं, या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही हैं, है
0: जी,
1: ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
0: एक से बढ़ के एक
1: एक से
0: चीजें
1: बढ़कर
0: हैं,
1: एक
0: एक से
1: प्रोग्राम जो
0: बढ़
1: है
0: के एक हैं
1: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
0: और
1: और
0: ट्रिब्यूट
1: पूरा
0: हो रहा है
1: प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये
0: जी
1: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं
0: जी
1: हो सका।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
1: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
0: जी
1: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
0: जी,
1: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब। और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
0: जी
1: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
0: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूं।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल

0: अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जी फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान पे, हमारे फादर लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
1: जी।
0: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
1: जी जी।
0: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
1: जी,
0: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
1: ओके।
0: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहां मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हम आर्य समाज में शादी करते हैं।
1: अरे बाप रे।
0: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब यह था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी।
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई,
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ
1: हाँ।
0: कि हम मैंने शादी कर ली है।
1: हाँ हाँ।
0: और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे
1: हाँ।
0: तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए।
1: हाँ।
0: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
1: हाँ।
0: तो मुझे यहां से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं अब।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूं उनके,
1: गजब।
0: और हाँ, और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे,
1: हाँ।
0: तो हाँ हाँ ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ कुआ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, इसमें करेंगे सब कुछ। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा,
0: ये
1: है।
0: नहीं होने देंगे।
1: हाँ।
0: मैं भी चलूंगी,
1: गजब,
0: मैं भी चलूंगी।
1: बाप
0: तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए, और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
1: जी जी जी
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: यहाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
1: हाँ।
0: सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है, और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूं।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता,
1: वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं जिंदा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता,
1: वाह वाह वाह,
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के एक आंसू कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह।
0: एक आंसू
1: कोरे
0: कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं। गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी।
0: मतलब किसी लाइन
1: होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है।
0: इतना प्यार मिला तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही, तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद।
0: अब क्या बताएं टूटे हैं

0: खुद को समेटते हैं यहां से
1: क्या बात है,
0: वहां से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: टू, और ये शेर मुझे खास सुनाना चाह रहा हूं।
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक होता
1: ये
0: है
1: होता है
0: शराब, जिसे
1: शराब।
0: मृग मरीचि का
1: जी
0: मिराज, जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं,
1: होता नहीं,
0: है ना, मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया, उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने कहां से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: से हम।
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या बात है।
0: यू
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं हरिहरन और लेस्ली लेविस की आवाजों में, लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ ये गाना, संगीत लेस्ली लेविस और हरिहरन का, एल्बम का नाम आत्मा।

अलीशाज लव नोट्स, ये एल्बम का नाम है। अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल और संगीत है संदीप चौटा का।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं शान, सुनीता राव और साथियों की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना, अनु मल्लिक का संगीत, फिल्म का नाम अशोका।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता।

ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: पी बलराम की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई।

0: शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती

0: पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में, तो सुनिए आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।
1: तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहते हैं आमी तुम्हाके भालो बाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनु प्यार करना, तेरे जियो नयो लवड़ी ओ साथी हो न।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: सवारी हड़ा अयो रे प्यार में जो ना करना चाह वो भी मुझे करना पड़ा
1: अयोड़ा अयो अयो मन दुखोड़ी

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना
1: त्रिपुरा के पतवा,
0: गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल और रविशंकर का संगीत।
1: मैं उठते ही लो अरे पुरुआ के झोंकवा में

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओ यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे

0: स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tended record of genocide at the United Nations Security Council, speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday. India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defense Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today jointly inaugurated the Indian War Memorial at Im Jingak Park in Seoul. Constructed as part of the commemorative events marking the 75th anniversary of the Korean War, The memorial stands as a tribute to the courage, sacrifice and humanitarian service rendered by the 60 para field ambulance of the Indian Army and the custodian force of India during the war. Highlighting the transformative potential of artificial intelligence in reshaping healthcare

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। आंगनबाड़ी भवन निर्माण, शत प्रतिशत टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। और रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी। उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज लाल आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। रांची पुलिस मुख्यालय में आज एक साथ रिकॉर्ड 27 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 25 प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और 2 जेजेएमपी के सदस्य हैं। सरेंडर करने वाले 8 शीर्ष नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इनके खिलाफ 426 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उग्रवादियों ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष 5 इंसास राइफल सहित भारी मात्रा में आधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी सौंपे हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये भटके युवा मुख्य धारा में लौटे हैं।
1: आज झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए यह एक अविस्मरणीय दिवस है। मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत दिया गया है, आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे।
0: कृषि विभाग रांची की ओर से नगड़ी प्रखंड में जिला स्तरीय किसान मेला सह कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने हिस्सा लिया, जिन्हें आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और सरकारी अनुदान

0: योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर कृषि एवं उद्योग विभाग के सभापति आदिल अजीम ने शिरकत की। रांची में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने, पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल और अपार आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। रांची में जिला जज एवं स्वच्छता समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के कड़े निर्देश दिए गए। सीबीआई की धनबाद टीम ने सीजीएसटी के गिरिडीह कार्यालय में 15 घंटे लंबी छापेमारी की है। टीम ने इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले को सुलझाने के एवज में रिश्वत लेते सुपरिटेंडेंट बुद्धेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए धनबाद ले जाया गया है।
1: जीएसटी के दो पदाधिकारी मिल करके जांच के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। इस सीबीआई के नंबर पर हम भी बात किए, उसके बाद रिपोर्ट को लिखवाए, उसके बाद जो भी हुआ रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था, तो आज हमने 50,000 रुपया दिए जो आज पकड़ा गया है।
0: झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परिषद ने उम्मीदवारों की मांग और विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जैक द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी जेटेट के लिए आगामी 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर सरोज शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कुल 30 एजेंडों को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें विश्वविद्यालय में शोध और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन खोलने का फैसला शामिल है। भारतीय सेना ने 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना यानी TES 56 कोर्स के लिए योग्य युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 12वीं कक्षा और JEE मेंस 2026 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून तक भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना पुलिस ने बीते 15 मई को हुई फायरिंग की घटना का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर इन आरोपियों को दबोचा।
2: तो ये 6 लोगों की कुल मिलाकर इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 4 अवैध देसी पिस्टल है, 5 जिंदा गोलियां हैं, 1 खोखा, 3 खाली मैगजीन, जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी उस घटना में उसको भी बरामद कर लिया गया है और 6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 136 अंक बढ़कर 75,454 पर और निफ्टी 72 अंक बढ़कर 23,731 पर पहुंच गया।

0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कोडरमा जिला इन दिनों भीषण लू और तपिश की चपेट में है। जिले में सुबह 10 बजते ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण गर्मी के कारण स्थानीय नदी और जलाशयों का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर राजीव कांत पांडे ने श्रोताओं से अपील की है कि वे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बिना जरूरी काम के घरों से बाहर न निकलें।
1: कि अगर जरूरी ना हो तो आप भारी धूप में ना जाएं। यदि आपको किसी कारण से निकलना ही होता है तो सारा प्रोटेक्शन ले, जैसे कि कोई गमछा बांध के रखे, हो सके तो जो ढके हुए वाहन हैं उनका प्रयोग, बाइक और टू व्हीलर हो सके तो अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, बार बार पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट साथ में रखें, अपने यूरिन के कलर को वॉच करते रहें।
0: राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड एथलेटिक्स संघ के सचिव एसके पांडे ने बताया कि इस महाकुंभ में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता। रांची में एक साथ 27 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष डाले हथियार। रांची में समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, 100% टीकाकरण और अपार आईडी कार्य में तेजी लाने के निर्देश। जेटेट के अभ्यर्थियों को जैक ने दी बड़ी राहत, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर अब 2 जून की गई। रांची विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी, उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए खुलेगा नया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और रांची में कल से शुरू होगा देश का बड़ा खेल महाकुंभ, 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे खमाज में ठुमरी। कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।
1: हर समय श्रोताओं के साथ है, धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो, तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको बताना है।

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो खत भले ही धूल खा रहा था, लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए, लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना, लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्माया गया ये गाना है।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने क्या का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंची है, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं। जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल विश्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं। मुझे आज भी वो पहली मुलाकात याद है, बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्मपत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक, हाँ, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है। सचमुच ही सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह, सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने के सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली, इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोंसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी, भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं, सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं, एक सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है, तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है। तो चलिए, पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

0: been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
3: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
4: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
5: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
6: इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड।
7: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
8: इट्स लीडरशिप इन जेनेरिक मेडिसिन।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधान

0: लोकसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 फरगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोक भवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं। चाय,
4: ये चाय। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश

0: हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार।
2: कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना। संगीत है सलील चौधरी का, फिल्म का नाम छाया।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

0: का सभी का जो भी आवश्यकताएं है अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
1: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
2: सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के अवसर पर नामकुम स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे एवं सुप्रियो भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सेवा की मिसाल रहा है। झारखण्ड राज्य में उनका योगदान अमिट है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आज व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान

मामले दर्ज किए गए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अरविंद कुजूर ने बताया कि जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों की सूचना देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देश पर झारखंड एथलेटिक्स संघ और खेल विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई से 25 मई 2026 तक रांची में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो तथा एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: की सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप
2: चंचल जी? और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भाई देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने।
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और तो आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई
2: वो उन्हें बताएं अपना। हाँ। बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता यानी कि सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते हैं पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत, जहाँ पे इतनी 50 आप सोच लीजिए कि गर्मी इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए, चाय चाहिए। चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहाँ एक पांचवी चीज होती है वो चाय होती है, दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो आपका साथी अगर चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो अपना आलम बांध देती हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात
2: करेंगे। और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
2: जी और बिल्कुल, ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
2: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
2: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राहीबाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेतीबाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपने बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो है वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात यह थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो, और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको, के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझे जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ पैदावार पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है।

0: और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2015 में 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: से
0: अगर
1: बिल्कुल
0: मिल जाए
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी।
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े थोड़े
1: हाँ
0: अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सरदर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो
1: अरे
0: है ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए, चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर के उसने मुझे चाय नहीं पिलाई,
0: भाई
1: बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरब से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती हैं।
1: सच में बहुत ज्यादा
0: और पौराणिक
1: बहुत
0: कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा
1: बिल्कुल।
0: कहा जाता है।
1: और चंचल जी, ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: और वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय बात करते करते, तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम

0: करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है, बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेल जोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
1: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
0: बिल्कुल
1: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तोहफा हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में, साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कप तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदला क्यों गया आखिर. तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ ये तो हम कहेंगे.
0: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसा कैसे होगा.
1: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है. दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त

0: राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी,
1: लेकिन हाँ इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया, और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है, और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
0: स्वादिष्ट मिलती है,
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं, और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं, स्वाद डाले जाते हैं, जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं। लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी। बहुत ज्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं। भाई चाय तो चाय है। और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि एक कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से एक कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पति के कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना। मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती है।
0: चाय की पहले भी करवा लिए जाते हैं।
1: कप चाय मिल जाने पे।
0: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
1: क्या बात है भाई।
0: लिखने का अंदाज ही बड़ा प्यारा है इनका।
1: एक और मैसेज होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है, सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
0: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के द्वारा।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षित जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बनाती है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व हमारे घर में मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं जोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत का प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरी चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है, जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया है ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा ये क्यों ऐसा हो रखा है, तो उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का भी उनको, ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
0: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी

0: पानी की कमी के लक्षण होते हैं और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
0: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी
2: बिल्कुल जाना है शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर इसका हिस्सा बनेंगे।
2: बिल्कुल पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की।

0: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां से आंखें जल्दी सूखती हैं, और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
0: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तेज़ धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा ज़रूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना, और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत।
1: चलिए।
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार,
0: नमस्कार।

0: कार्य की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण, शोध, नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और इंडस्ट्री लिंकेज को मजबूत करने का आह्वान किया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर जमशेदपुर में कांग्रेस ने जिला कमेटी के नेतृत्व में साक्षी आम बगान से उपायुक्त कार्यालय तक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा। चतरा के जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट सह प्रशिक्षण भवन हॉल में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के लगभग 550 किसानों को बदलते मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आकस्मिक फसल अपनाने की सलाह दी गई। उन्हें बताया गया कि ऊपरी भूमि पर दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती लाभकारी साबित हो सकती है। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा जमशेदपुर मार्ग पर कुजू पुल के पास हुए सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पूर्वी सिंहभूम जिले के पुटका थाना क्षेत्र के रोलाडी गांव निवासी 30 वर्षीय सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और उससे अधिक पहुंच गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बम्बई का तो मौसम इस समय थोड़ा बहुत गर्म है, वैसे तो मौसम यहाँ का खुशगवार ही रहता है। राजस्थान के बारे में कुछ बताइए, पिंक सिटी कहा जाता है इसे।
2: पिंक सिटी कहा जाता है और यहाँ जयपुर में ना दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं मैडम। यहाँ घूमने के लिए जगह है बहुत सारी, जैसे रामनिवास बाग हो गया और आमेर किला हो गया, आमेर की माता हो गई।
1: अच्छा, तो यहाँ का तो खान पान भी बड़ा प्रसिद्ध है।
2: हाँ जी, यहाँ खान पान बड़ा दाल बाटी चूरमा होता है मैडम।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि विविध भारती सुनते रहते हैं।
2: जी मैडम, मैं विविध भारती सुन रहा हूँ, 2011 से मैं विविध भारती के साथ जुड़ा हूँ मैडम।
1: अच्छा, कार्यक्रम कौन कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
2: मेरे को सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुनता रहता हूँ। ये हेलो फरमाइश हो गया, आज के पनकार हो गए और ये सखी सहेली में खास कर मेरे बहुत फेवरेट है। उसमें सचिव की बात होती है और सकाव की बात होती है, फेसबुक पे कमेंट पढ़े जाते हैं मैडम, बचपन से लेकर हमारे जो भी बातचीत होती है तो बताया जाता है मैडम।
1: अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं?
2: जी मैडम, हम खेती बाड़ी करते हैं और इस टाइम तो खेत खाली है।
1: अच्छा, चावल की तैयारियां हो रही होंगी या क्या लगेगा गर्मी के बाद? फिर
2: अभी से बाजरा की फसल लगाएंगे मैडम, एक डेढ़ महीने बाद बाजरा बोएंगे।
1: अच्छा, तो चलिए अब आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा सलाके और इसमें गाने के बोले धक धक वाला ऐसा कुछ गाना है, वो सुनना चाहूंगा मैडम मैं।
1: तो चलिए, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है ये गीत आपकी पसंद का, सुनिए।

0: हेलो फरमाइश, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मेरा आंटी सारिया प्रयाग से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं
1: जी? अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन से क्लास में है?
1: नाइन्थ में।
0: नाइन्थ में, तब तो बड़ी सारी जिम्मेदारियां आ रही हैं। नाइन्थ का एग्जाम तो बहुत सावधानी से देना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तो टेंथ आ जाता है, तो जिम्मेदारियां नाइन्थ से बढ़ जाती हैं। तो बताइए तैयारियां कैसे चल रही हैं आपकी, और अभी तो वैसे रिजल्ट आ गया होगा।
1: जी।
0: अच्छा, तो आप दसवीं क्लास में चले गए।
1: जी, आपके कार्यक्रम सारे सुनते हैं।
0: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: आज के फनकार, गीतों भरी कहानी, आज के मेहमान, सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: तो आप तो पढ़ाई भी साथ साथ करते हैं और रेडियो भी साथ साथ सुनते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो रेडियो से आपका जुड़ाव कैसे हो गया?
1: रेडियो जुड़ा बचपने से सुन रहे हैं रेडियो को,
0: क्योंकि देखिए आजकल जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर तो मोबाइल देखते हैं और ज्यादातर टीवी देखते हैं, रेडियो की तरफ तो झुकाव होना बहुत अलग बात है। लेकिन आप रेडियो सुनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है?
1: हमें जो सखी सहेलियां जो विषय रखते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियां होती हैं।
1: हाँ, हमें मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इसमें आंखों में रोशनी भी जा सकती है।
0: तो आप अपने आप को मोबाइल से कैसे दूर रखते हैं?
1: क्योंकि हम रेडियो सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, हमारी पढ़ाई भी चलती रहती है।
0: तो बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए कि आप अपने साथ के जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस समय रेडियो पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके लिए मैं ही कहेंगे कि आप भी पढ़ाई करिए, रेडियो सुनिए, मोबाइल से ज्यादा से ज्यादा दूर रहिए।
0: और अपने शहर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, यहाँ संगम है, बहुत ही अच्छा संगम है।
0: तो ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से हम दे देते हैं क्योंकि आप दसवीं में आ गए हैं। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। काले बोले दिल में सनम की सूरत, आंखों में आंखें दे, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे।
0: और अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। दिल में

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा गांव गुरपुरी से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: हिमाचल प्रदेश कांगड़ा, ये तो बहुत सुंदर जगह है गोल्डी जी।
1: जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल
0: जी। तो आजकल क्या मौसम है वहाँ?
1: जी मैम बहुत गर्मी है आजकल, तो पक्षे की भी मतलब पता नहीं लग रहा, पक्खा लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ, लगाया दो पक्खे लगाएंगे वो भी काम पड़ जाएंगे।
0: मतलब अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ?
1: जी बहुत गर्मी है मैम।
0: अच्छा, काम क्या करते हैं?
1: मैं दृष्टिहीन हूँ, ऐसे घर का ही काम करता हूँ थोड़ा बहुत।
0: अच्छा अच्छा, तो विविध भारती सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहते मैम कुछ प्रोग्राम।
0: बताइए कि विविध भारती के कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मैम हेलो फरमाइश।
0: तो अपने काम काज के साथ कैसे समय निकालते हैं रेडियो सुनने का?
1: मैम रेडियो सुनते रहते हैं काम काज, क्योंकि रेडियो तो ऐसा मनोरंजन साधन है कि इसमें तो काम काज में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, क्योंकि रेडियो तो हमने सिर्फ कानून से सुनना होता है।
0: हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैम हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा है, इसमें देवी देवताओं के स्थान है, ज्वाला जी माता का मंदिर है, चिंतपूर्णी माता है, नैना देवी है, और भी बहुत है, ड्योल सिद्ध बाबा बालकनाथ जी है।
0: और हमारे सुनने वाले अगर हिमाचल प्रदेश जाना चाहें तो कौन सा मौसम सबसे अच्छा रहेगा?
1: मैम आजकल का जो मौसम है बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर मई जून में बरसात आ जाएगी, तो बरसात में थोड़ा फिर मुश्किल हो जाती है ना, नवंबर से लेकर आज मई तक आ जाए, और थोड़े दो तीन महीने में जून जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ना आए, क्योंकि बरसात पड़ती है तो फिर कोई क्या होता है, कभी रास्ते खराब हो जाते तो फिर मुश्किल हो जाती है जी।
0: अच्छा देखिए, हिमाचल की जो संस्कृति है वो बड़ी अलग सी है, यानी कि वहाँ के अगर हम पोशाकों के बारे में बात करें, पारंपरिक पोशाक के बारे में बात करें, वहाँ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम संस्कृति तो हर राज्य की अलग अलग ही होती है मैम अपने अपनी।
0: बिल्कुल
1: मैम, यहाँ हमारी ये कि हमारे जो कांगड़ा की जो धान है वो कुछ अलग ही है, वो पूरे शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी, जो हमारे कांगड़ा में हिमाचल में है, हमारे कांगड़ा की जो धान बनती है फंक्शनों में शादी वगैरह में।
0: अच्छा, और कांगड़ा की मैं आपको एक खास बात बताती हूँ कि वहाँ की जो टोपी बनाई जाती है, वहाँ की जो पोशाक होती है जो लोग पहनते हैं वो बड़ी खास होती है, और उसमें जो कढ़ाई वगैरह की जाती है वो बड़ी अलग सी होती है।
1: बिल्कुल मैम।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम है उपकार और गाने के बोल है कसमे बादे प्यार सब बातें हैं बातों का क्या।
0: बहुत सुंदर गीत है, तो लीजिए आपको आपके

0: हेलो फरमाइश। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से।
0: क्या करती हैं हसीना जी?
1: सिलाई करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, तो इंदौर के क्या हाल हैं?
1: अच्छे हाल है, मगर गर्मी तो सब दूरी है मैम।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या खास है, क्या खान पान है, या किस तरह से गर्मी से निजात पाने की कोशिश की जा रही है?
1: गर्मी के लिए तो एक शायरी कर देती हूँ आपके लिए। इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो विविध भारती की आवाज है, और इसका जब आगाज होता है तो फिर हर तरफ शीतलता ही शीतलता होती है, और बहुत हमारे श्रोता
1: पहुँचाते हैं आपके गाने जो मुंबई से आते हैं ना मैडम, बहुत ठंडक पहुँचाते हैं।
0: हाँ,
1: चलता रहते हैं।
0: जी जी जी। हसीना जी, अपने काम काज के बारे में बताइए।
1: मैं गनी बेग का काम करती हूँ, जूट का होता है मैडम। सुबह हम 9:30 बजे चले जाते हैं और 6 बजे वापस आते हैं। मतलब घर का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी करना पड़ता है।
0: तो जूट का काम, क्या काम, कुछ बनाती हैं उसका?
1: इसका रिपेयरिंग होता है मैडम, हाथ से रफू होता है।
0: अच्छा अच्छा, और क्या करती हैं
1: इसके अलावा? तो बस अभी कहीं पर भी कॉल रहते तो लगाती रहती हूँ मैं, आप लोगों को सुनती रहती हूँ। हेलो सहेली में भी और विविध भारती के जितने भी कार्यक्रम आते हैं, जो मंच आएगी तो आपने शुरू करा, इसके लिए भी शुक्रिया।
0: अच्छा हसीना जी, एक बात बताइए कि आप काम करने भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, तो इस बीच रेडियो कैसे सुनती हैं?
1: मैडम दुकान पे भी रेडियो रहता है दिन भर, और घर पे भी रहता है,
0: तो काम भी चलता रहता है, रेडियो भी चलता रहता है। तो हसीना जी, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं नरोत्तम गौड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: नरोत्तम गौड़ जी, आप तो विविध भारती के बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: जी मेहरबानी आप लोगों की,
0: क्योंकि मैं आपको, जो आपका नाम है वो बहुत पुराना है, बहुत समय से मैं सुन रही हूँ। तो नरोत्तम गौड़ जी, क्या समाचार हैं आपके शहर के?
1: हमारे शहर में भी हम 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की गर्मी में जीवन यापन कर रहे हैं।
0: जी, अपना ख्याल कैसे रखते हैं आजकल?
1: ख्याल तो बस आवश्यक कार्य होता है तो बाहर निकलते हैं, और जो उपाय होते हैं वो करते हैं। भरपूर पानी पीते हैं, लिक्विड ज्यादा काम में लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: पुरानी खाने पीने की चीज ताजा ही खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, और हमको अभ्यास भी है। राजस्थान के लोग हैं हम तो, गर्मी का अभ्यास है।
0: तो नरोत्तम जी, ये बताइए, घर के जो सदस्य हैं वो भी रेडियो पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो बजता है तो सभी सुनते हैं, क्योंकि मैं सेवा पूरी तो अधिकतर मैं घर पे ही रहता हूँ। पूरे दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे तो मेरा रेडियो चलता ही है, और विविध भारती ही उससे सुनते हैं।
0: तो आपके अगर शौक के बारे में बात किया जाए तो क्या है शौक आपका?
1: मैं दरअसल राजकीय सेवा से निवृत्त हूँ, तो 41 साल मैंने मेरे जीवन के राष्ट्र सेवा में, राजकीय सेवा में, लोक सेवा में निकाले। मेरे को भोजन करने का, खाने पीने का बहुत शौक है, गुनगुनाता भी हूँ।
0: तो कुछ गुनगुनाकर बताइए हमें फिर।
1: अभी जो गाना मैं सुनना चाहूंगा,

0: क्या है कि उदयपुर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है
1: जी।
0: धर्मेंद्र हेमा मालिनी और जानी वाकर पे फिल्म आया हुआ है राजा जानी फिल्म का, तो वो मैं गुनगुना देता हूँ और आप सुना भी दीजिए। कितना

0: हेलो फरमाइश,
1: कैसे हो आप?
0: हाँ मैं अच्छी हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: कच्छ गुजरात से, गांव का नाम नया अंजार, कच्छ खत्री कॉलोनी एरिया से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल कादिर खत्री।
0: तो अब्दुल कादिर जी, अपने शहर के बारे में, गुजरात के बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ, हमारे कच्छ जिले के बारे में बात करें तो कच्छ तो एक बड़ा जिला है।
0: क्या करते हैं?
1: बंदेज साड़ी आता है ना, बांधनी, वही साड़ी बनाने का काम है हमारा।
0: अच्छा, तो ये तो बड़ी ही क्या कहते हैं ना कि समृद्ध कला गुजरात की।
1: मतलब जटिल कला है, जटिल कला है जो तो कोई नहीं कर सकता। सीखने में टाइम लग जाता है और बारीक धागे से इसे राई की दाने के बराबर बांधा जाता है और बांधने के बाद इसे डाइंग किया जाता है कोई भी कलर में। जैसे कि कपड़ा सिल्क है तो सिल्क का कलर चलेगा, कॉटन है तो कॉटन का चलेगा कलर, और अगर दूसरा कोई दुतियान है या कोई तसर है कपड़ा, दूसरा कोई भी कपड़ा जॉर्जेट, तो उसके हिसाब से दूसरा कलर चढ़ेगा। मगर कलर करने के बाद इसका जो गेटअप आता है ना, वो बहुत बढ़िया आता है गेटअप।
0: लेकिन अक्सर करके देखते हैं कादिर जी कि जो बंदेज साड़ियां होती हैं या जो इसके शलवार कुर्ते बनते हैं, इनमें रंग बहुत जल्दी निकल जाता है, तो ऐसा क्यों होता है?
1: क्या है कि सिल्क में तो कलर की गारंटी बिल्कुल नहीं आती, हेवी साड़ी होती भी तो भी नहीं आती, क्योंकि इसमें एसिड कलर का यूज किया जाता है और ये सब भारी साड़ी आती है ना, ड्राई क्लीन भी होती है। मगर कॉटन में आप लेंगे ना कहीं से भी, तो कॉटन में शायद इसमें बहुत कम कलर निकलते हैं। कॉटन में, कॉटन आता है ना कपड़ा, वो वेट कलर चढ़ता है, तो इसमें कलर निकलने का कोई शिकायत नहीं आता।
0: जी जी, तो उस पर जो काम किया जाता है, जो आप बनारसी काम बता रहे हैं, तो वो क्या पहले के समय में तो सोने और चांदी के तारों से होता था, तो अब ये किस तरह से होता है जो आप बता रहे हैं?
1: वो तो आता है, वो तो रेडी आता है ना, वो सफेद कपड़ा

0: है ना, वो तो बनारस से रेडी आता है, वो जैसा भी धागा होता है ना सोने चांदी का डिजाइन किया हुआ, उसके ऊपर हमारा काम तो बंदेज करना है। देखो व्हाइट साड़ी है तो इसमें हमने सफेद दाना निकाला, येलो दाना निकाला, उसके बाद उसे ड्राइंग कर दिया, ग्रीन किया, फाइनल फाइनल ग्रीन करने के बाद दो तरह के दाने निकलेंगे, येलो भी निकलेगा और व्हाइट भी निकलेगा इस तरह से।
1: जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि कादिर जी, ये जो आप बंदेज की साड़ियों का काम करते हैं, ये मुझे ये बताइए कि ये आपके परिवार में सभी लोग करते हैं और इसको आपको आगे बढ़ाना है या फिर ये सिर्फ आप ही करते हैं?
0: ना मैं करता हूँ, मेरा वाइफ भी करता है, मेरा लड़का ही, हम तीनों इस काम में लगे हुए रहते हैं।
1: तो इस काम के साथ साथ विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
0: ना बिल्कुल सुनते रहते, क्यों नहीं, विविध भारती में आप तो एक नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ, उसके लिए हम बधाई देते हैं आपको, मन चाहे गीत पत्रों के ऊपर आधारित।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप बताइए कादिर जी अपनी पसंद का गीत।
0: खानदान फिल्म से है, जितेंद्र अभिनीत फिल्म है ना खानदान, उसका ये लता मंगेशकर की आवाज में है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है।
1: और अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है

0: हेलो फरमाइश।
1: हम भी रमेश साहब बोल रहे हैं बिहार बांका जिला गांव झिकुरिया से।
0: तो बिहार में तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही होगी कमलेश जी।
1: हाँ जी, ये तो 2-3 दिन पहले बारिश हुआ था जी।
0: तो बताइए काम क्या करते हैं कमलेश जी?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती का काम जो होता है अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोपरि है, क्योंकि आप न सिर्फ अपने लिए मेहनत करते हैं बल्कि जो खेतों से अनाज आता है उससे हम सब भी जो है वो पोषित होते हैं, है ना? तो कमलेश जी, ये बताइए कि आजकल क्या चल रहा है खेतों में, यानी कि जो अगली फसल है। देखिए अभी तो आम का मौसम है।
1: हाँ जी, मौसम तो अभी आम का है और खेतों में अभी मूंग लगा हुआ है और सब्जी भी लगा हुआ है।
0: सब्जियां और मूंग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो आम की खेती है वो इस समय तो पूरी तरह से अच्छी होगी।
1: हाँ जी, अच्छी है।
0: अच्छा, तो ये बताइए कमलेश जी कि जो खेत हैं, जैसे आपने मूंग की बात करी, तो इसमें जो आजकल खाद इस्तेमाल की जाती है वो क्या आप जैविक खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: खाद एक यूरिया पड़ता है, वो पड़ता है जी।
0: अच्छा अच्छा, कमलेश जी बताइए, फिर खेती का काम करते हैं तो रेडियो कैसे सुनते हैं? मेड़ पे रख के सुनते हैं?
1: रेडियो तो मैम जी पहले चलता था, अब तो हम मोबाइल ऐप पे न्यूज ऑन ऐप पे सुनते हैं।
0: तो मोबाइल ऐप तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस वो है कि सिग्नल आना चाहिए, है ना?
1: हाँ जी, सिग्नल बहुत अच्छा पकड़ता है कहीं से भी, हर जगह, जहाँ भी खेतों में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहाँ मोबाइल पास में और न्यूज ऑन ऐप पे चलते रहता है आपका हेलो फरमाइश का कार्यक्रम। पंचायत गीत भी चालू हो चुका है आपका।
0: तो आप कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हैं विविध भारती के?
1: कार्यक्रम तो हमको हेलो फरमाइश सबसे फेवरेट है, और शाम को जो 7 बजे आता है
0: शाम को
1: माला कार्यक्रम।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताएं अब अपनी पसंद का गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बेटा फिल्म का गाने का बोले कोयल सितेरी बोले कू कू वाला गाना सुना दीजिए।
0: तो आप लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं
0: नमस्कार।
1: अमृतसर से बोल रहा हूँ जी, शरण पल्ला जी। जय
0: अच्छा,
1: महाराष्ट्र, आम की मुंबई, सुंदर मुंबई। मैं बॉम्बे में रहा हूँ 18 साल जी।
0: मुंबई में किसी कामकाज के सिलसिले में रहते थे?
1: हेल्पर था मैं नेवी, जब ये त्रिशूल और विजय बनते थे ना, विक्रांत चालू हुआ था, मैं उस टाइम बॉम्बे में ही था जी।
0: अच्छा,
1: मैं अभी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं फिर अमृतसर आ गया जी। मेरे को हो गए 20-22 साल अमृतसर में जी।
0: अच्छा, तो अमृतसर के क्या हाल है बताइए।
1: अमृतसर में इस टाइम गर्मी बहुत है मैडम जी, फसल तो कट गई है, खेत खाली पड़े हैं बस।
0: जी, और वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो तो थोड़ा घर में ही रहना ज्यादा दोपहर के समय अच्छा होता
1: हाँ
0: है।
1: जी, आप लोग बताते रहते हैं ना कि गर्मी में 12 बजे से लेके 4 बजे तक बाहर मत निकलो, सुन के अमर भी करते हैं। अमृतसर तो खाने पीने वाला शहर है जी मेरा। वैसे अमृतसर के बाजू में अटारी गाँव है, वाघा बॉर्डर।
0: तो अमृतसर तो बड़ी सुंदर जगह है।
1: बहुत सुंदर है जी, बहुत सुंदर, गोल्डन टेम्पल, दुर्गियाना मंदिर, जलियांवाला बाग, घूमने लायक जगह है जी।
0: जी,
1: बॉर्डर जो हमारा अटारी है, वहाँ शाम को रोज 25-30 हजार आदमी इकट्ठा हो जाता है जी, झंडा उतरता है लख। हाँ जी
0: हाँ, तो वो सेना का जो ये
1: उसको,
0: कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है।
1: हाँ जी,
0: एक बात
1: लोगों
0: बताइए,
1: पर।
0: जो अमृतसर का यानी पंजाब का सुंदर सी परंपरा है सांझा चूल्हा की, इस बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ जी, सांझा चूल्हा, जैसे परिवार एक साथ रहते थे ना जी, सांझा चूल्हा उसको बोलते हैं कि परिवार एक और चूल्हा एक ही बनेगा, सबकी रोटी बनेगी। अभी सांझा चूल्हा तो खत्म हो गया, अभी तो एक एक बेटा कहाँ, एक बेटा कहाँ। पहले एक ही घर में 25-25 जी रहते थे, तो तंदूर भी एक चलता था, तो रोटी सारा मोहल्ला बनाता था, तो चूल्हा एक होता था, सारे खानदान की रोटी बन जाती थी, उसको
0: जी।
1: बोलते थे सांझा चूल्हा। ये टीवी सीरियल भी आया था सांझा चूल्हा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर या पंजाब की कहें तो वहाँ की जो खेती बाड़ी है, वहाँ की परंपरा जो है और वहाँ का खान पान बड़ा ही। तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि विविध भारती आप ही सुनते हैं या आपके परिवार
1: में? मैं अकेला ही सुनता हूँ बहुत। मैं तो ना जी, जब बड़े बड़े रेडियो भी होते थे ना जी, पनाका गीत माला आता था सिलोन से, मैं तभी से जुड़ा हुआ हूँ।
0: तो अब आप बताइए कि आप कौन सा अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म मनोज कुमार की पत्थर के सनम है जी, विजय रहमान, मुमताज, तौबा, ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
0: तो सुनिए लीजिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: तौबा।

0: हेलो फरमाइश
1: मैम, नमस्ते।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं ग्राम अलीनगर बरेली उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर रैना।
0: रैना जी, बताइए क्या हालचाल है आपके, क्या करते हैं?
1: जी मैम, बहुत बढ़िया हालचाल है मैम। आज बहुत दिनों में कॉल लगी मैम, बहुत खुशी हो रही है मैम। जी मैम, मैं कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री उसमें काम करता हूँ मैम।
0: तो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं क्या?
1: जी मैम, पीना पसंद करते हैं गर्मी में मैम।
0: अच्छा, तो कोल्ड ड्रिंक के बारे में हमें कुछ बताइए कि वहाँ फैक्ट्री में क्या काम करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता हूँ मैम, जो है डिस्पैच का काम देखता हूँ, सुपरवाइजर हूँ मैम वहाँ में। ये तो मैम जो है लोड कराते हैं कंपनी मैम, जो है बढ़िया से बनती है मैम। ये चीनी से और इसकी जो होती है वगैरह वगैरह उससे बनती है मैम।
0: अच्छा, तो ये कोल्ड ड्रिंक बच्चे भी बहुत पीते हैं और सबको भी बहुत पसंद है।
1: जी जी मैम, ये चीनी से बनती है मैम।
0: तो इसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है कि भाई इसको कम पिए?
1: जी मैम, कोल्ड ड्रिंक है जैसे सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक होती है मैम, बच्चों को भी बच्चों को कम पिलाना चाहिए सोफ्टनर की कोल्ड ड्रिंक मैम। ये कहना चाहता हूँ सोफ्टनर के माल से बच्चे रहे मैम, चीनी का माल पिए और कंपनी का माल पिए, अच्छा माल पिए मैम, उससे कुछ नहीं होता मैम। सोफ्टनर का माल पीने से थोड़ी बीमारी होती है।
0: और इसके अलावा और क्या काम करते हैं? यही है आपका मेन काम?
1: जी मैम, यही काम है, गाँव में दुकान है मैम अपनी।
0: अच्छा, रेडियो विविध भारती भी आप सुनते रहते हैं?
1: जी मैम, मैं ये सब बहुत सुनता हूँ मैम, मेरा बचपन से शौक रहा रेडियो सुनना मैम, और विविध भारती तो बहुत समय सुनता हूँ मैम। इससे पहले एक प्रोग्राम आता था SMS के बहाने, BBS के तराने, ये मैम तो बहुत पसंद था मैम।
0: तो ठीक है, अब आप ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने के बोल है कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की।
0: तो हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है?
1: मैं सुरेश रामू साबले, ग्राम सामनापर तालुका कागल शिल्ला कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ। सही,
0: क्या हाल चाल है कोल्हापुर के सुरेश जी?
1: गर्मी साधारण है और हमें करवांदा का मौसम है, धान मेवा है। वैसे पिछले साल में बंद रहता हूँ, घर में रहता हूँ।
0: और सुरेश जी ये बताइए कि कोल्हापुर में गर्मी कैसे पड़ रही है?
1: गर्मी बहुत है।
0: तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है?
1: दिनचर्या क्या है, कभी उठता हूँ, रेडियो सुनता हूँ, भजन सुनता हूँ, भजन गाता हूँ। भजन मंडल है, भजन मंडल में भजन गाता हूँ।
0: अच्छा, तो भजन भी गाते हैं, तो कुछ सुनाइए भजन।
1: दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले, दक्कनचा राजा ज्योतिबा माझा बोलूया चांगे भले। सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले ज्योतिबाची, सासन काठी डुले, सासन काठी डुले डुले।
0: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको ढोल मंजीरे के साथ गाते होंगे तो ये भजन और भी अच्छा और भी सुंदर लगता होगा, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैंने प्यार किया लता मंगेशकर, एस बी बालसुब्रमण्यम, और गीत है देव कोहली, संगीतकार का नाम है राम लक्ष्मण। बोल भाई दिल दीवाना दिल सजना के मानना ये पगला है, समझाने से समझे ना।
0: ठीक है सुरेश जी, आपकी पसंद का ये गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए।

0: था हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आपको याद दिला दें श्रोताओं कि आज इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के कॉल हमने शामिल किए हैं वो कृपया हमें 2 महीने बाद ही दोबारा फोन करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा फोन नंबर 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। एक बार फिर आपको बता दें हमारा फोन नंबर आप नोट करें 4002466 2। मुंबई का STD कोड है 022। हमारा दूसरा टेलीफोन नंबर है 2867-0288। मुंबई का STD कोड 022। इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है प्रत्येक गुरुवार शाम 4 बजे से। श्रोताओं आज के कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर का और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तो अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात और फिर होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवी

0: दास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई, प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने 23 और 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सायंकालीन सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। मैं मोहम्मद फखरुल हसन बना रहूंगा इस सभा में आपके साथ रात्रि 11:10 तक। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 6:02 पर ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी, चर्चा होगी बीज उपचार की विधि एवं उसके लाभ पर। साथ ही चर्चा में सुनिएगा जैविक खेती के कई लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे कृषि में जैव विविधता पर। भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र चिया की। भेंट करता है संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा किसान वाणी शाम 6:30 से। चर्चा होगी समसामयिक कृषि कार्य पर, आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के अनेकों लाभ। भेंट वार्ता आप सुनेंगे एक सफल किसान से पारंपरिक खेती पर। भेंट वार्ताकार हैं ओपलिना वैया बेड़मा नवाडी रामगढ़ पलामू से। भेंट करता है संतोष कुमार। आज का मौसम, आज का बाजार भाव और आज की नसीहत में आप सुनेंगे फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर।

शाम 7 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार, क्षमा करेंगे, शाम 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। जिले में आजकल प्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। शाम 7:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग का आनंद आप लेंगे। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा उजाले की ओर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता जल जंगल और जीवन एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार हैं पूनम सहाय शांतिपुरी डाल्टनगंज से। शाम 8 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से हम प्रस्तुत करेंगे। 8:30 पर क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा सरहदें। 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पर उर्दू खबरें आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर हम पुनः शामिल होंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। रात 10 बजे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा को हम पेश करेंगे। रात 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी ये सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह रात 11:10 पर। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

आज की शाम युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोहम्मद फखरुल हसन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे आत्मविश्वास सफलता की कुंजी। इसी कार्यक्रम में राजीव गांधी पुण्यतिथि पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। इसी कार्यक्रम में गोविंद कुमार मेहता की वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय होगा सीखो और कमाओ, अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना, और कुछ मनोरंजन भी हम आपका करवाएंगे फिल्मी गीतों के माध्यम से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दोस्तों चर्चा से। दोस्तों, इंसान कभी भी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, परिस्थितियाँ इंसान की गुलाम होती है, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हीं लोगों की गुलाम होती है जिनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होता है। जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं, परिस्थितियाँ उन्हें तोड़ नहीं पाती, बल्कि वे परिस्थितियों को तोड़ देते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। चुंबक को लोहे के पास ले जाने पर चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार आत्मविश्वासी व्यक्ति को सफलता स्वयं में आकर्षित करती है। दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है दोस्तों, बस आवश्यकता है स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उसकी ओर बढ़ने की। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने जी ने भी स्पष्ट लिखा है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम नहीं। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, परिश्रम करने से तो सभी कुछ आसान हो जाता है। दोस्तों, आप स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए एवं जान लीजिए कि संसार का कोई भी लक्ष्य आत्मविश्वास की शक्ति का सहारा लेकर प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वक्त और हालात जीवन में एक तरह के नहीं होते, कभी खुशियां साथ होती हैं तो कभी गम भी, कभी धूप है तो कभी छांव भी। ये जीवन में जीवन का सत्य है दोस्तों, इसे हर हाल में हमें इससे गुजरना है। दोस्तों, क्यूरी दंपति ने कई बार असफल होने के बावजूद रेडियम की खोज की। ग्राहम वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। एलियर्ड हॉवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार कर डाला। मैकमिलन ने साइकिल का निर्माण किया। न्यूटन ने पेड़ से फल गिरते देखकर गति के नियम खोज डाले। क्या इन लोगों ने ये सब आसानी से कर लिया था? नहीं, बहुत संघर्ष के बाद उन्हें सफलता मिली थी। दोस्तों, रात रात भर जागे, भूखे रहे, फटे कपड़े पहनकर परिश्रम करते रहे। लोगों ने इन्हें पागल एवं सिर्फ रात तक बोला। घर वालों ने उनको क्या से क्या बोला, लेकिन उन्होंने हार ना मानी एवं आज सारा विश्व उनके आविष्कारों का लाभ उठा रहा है। वे यदि महान बने तो किसके बल पर? दोस्तों, आत्मविश्वास, संकल्प एवं अपने अथक परिश्रम के बल पर। जी हाँ दोस्तों, आप याद कीजिए साहसी नाविक कोलंबस के साहस को। वे भारत की खोज में निकले थे, सागर की लहरों से संघर्ष किया, सारे साथी बिछड़ गए, भूख सहन की, प्यास सहन की, मृत्यु सर पर मंडराती रही, लेकिन विश्वास का दामन ना छोड़ा। वे भारत तो ना आ पाए, लेकिन अमरीका खोज डाला। ऐसे एक दो नहीं, हजारों लाखों उदाहरण हैं जबकि लोगों ने आत्मविश्वास के बल पर अद्भुत सफलताएं अर्जित की। अब्राहम लिंकन अमेरिका के महान राष्ट्रपति बने। किसे पता था कि लिंकन नाम का ये एक जो है असहाय एक दिन इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बचपन के संघर्ष को पढ़कर अच्छे अच्छों का धीरज डोल सकता है, लेकिन वही अब्दुल कलाम साहब ने केवल भारत के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार बने, बल्कि भारत के राष्ट्रपति जैसे गौरवशाली पद को अपने व्यक्तित्व से सुशोभित कर रहे किया। दोस्तों, सफलता आपका वर्ण भी अवश्य करेगी, लेकिन इसके लिए आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा।
संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाना होगा। याद रखिए, जो लोग मुसीबतों से घबरा जाते हैं, कर्म नहीं करते, उनकी किस्मत ही उनका जीवन चलाती है एवं सदैव पतन की ओर ले जाती है। ऐसे लोग ही किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जो लोग आत्मविश्वासी एवं परिश्रमी होते हैं, वे अपनी किस्मत का निर्माण स्वयं करते हैं। होमर का कथन है दोस्तों, महान आत्मविश्वास से ही महान कार्य किए गए हैं एवं महान खोजे हुई हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है, प्रतिभा क्षमता होते हुए भी उसे अभिव्यक्त कर होने में हर तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो लोग धैर्य, लगन एवं आत्मविश्वास रखते हैं, संसार उन्हीं की प्रतिभाओं का लाभ ले पाता है। दोस्तों, स्कॉटलैंड में एक बालक जन्मा। गरीबी से दुखी इस लड़के ने बचपन में ही एक दिन अपना घर छोड़ दिया। ढेरों मुसीबतें सहन की, भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन विश्वास का दामन ना छोड़ा। अंततः वो अमेरिका पहुंचकर एक इस्पात कंपनी में चपरासी हो गया। वो अपने साहब की अलमारी से कोई भी किताब निकाल लेता और उसे पढ़ने लगता। वो इतनी तल्लीनता से पढ़ता कि पुस्तक की अधिकांश बातें एक बार में ही याद हो जाती। एक दिन मीटिंग थी, कोई प्रश्न आ पड़ा, उसे मैनेजिंग डायरेक्टर तक सुलझाने में असमर्थ थे। वो लड़का पास में ही खड़ा था, उसने एक पुस्तक उठाई एवं बीच में ही शीघ्रता से एक पृष्ठ खोलकर डायरेक्टर के आगे बढ़ा दिया। यही वो उत्तर था जिसकी खोज हो रही थी। यह लड़का आगे चलकर डेल कार्नेगी के नाम से विख्यात हुए। संसार का कोई भी कार्य दोस्तों कठिन नहीं है, यदि आपके मन में आत्मविश्वास है, आप सफलता की इच्छा रखते हैं, तो संकल्प कीजिए एवं पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कागावा एक महान पुरुष थे, उन्हें जापान का गांधी कहा जाता है। वे लिखते हैं, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो संकरा है और प्रतिकूल परिस्थितियों के तीखे आघात प्रति क्षण आपको परेशान कर रहे हैं, उस समय भी अपना धैर्य मत खोइए। आपके भीतर जो एक चैतन्य शक्ति समाई हुई है, वही आपका प्रकाश, पथ प्रदर्शक, सुहृद और साथी है। उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते चलिए, विपरीत परिस्थितियां आपका कुछ भी न बिगाड़ सकेंगी। याद रखिए, आपके संकल्प में उतना जीवट है जितना समुद्र के हाहाकार में। उसके आगे कोई आंधी, कोई तूफान आपकी राह ना रोक सकेगा। अंधकार में ही आपको प्रकाश मिलेगा, अकेलापन में भी आपका साहस स्थिर रहेगा। घर पर अपने अडिग विश्वास को ना खोइए, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे, उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ेंगे। कुछ भी करने का अजस्त्र स्रोत आपके अंदर छिपा हुआ है, इस शक्ति को जगाने का उपक्रम कीजिए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आपका भविष्य कीर्तिमय होकर आ रहा है। और उम्मीद का दामन आप कभी ना छोड़ें, हमेशा जो है आशान्वित रहें, उम्मीद लगाए रखें। एक

इन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों ये हुई कुछ बातें, चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा।

0: दोस्तों अब कुछ बातें राजीव गांधी पुण्यतिथि पर। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ज़मीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर। स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दिलों पर भी राज किया। वे भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा हैं। राजीव गांधी ने 19वीं सदी में 21वीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ ही उनका अन्य बड़ा मकसद 21वीं सदी के भारत का निर्माण है। आपने इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने देश में कई क्षेत्रों में नई पहल की, जिनमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रसार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल हैं। वे देश के कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसका असर देश के विकास में देखने को मिल रहा है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल उन्हीं फैसलों का नतीजा है। 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने और दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने सरकार की अगुवाई की है। उनकी माताजी श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थीं, तब वो उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थीं। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू 58 साल के थे जब उन्होंने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये हमेशा हमारे दिलों में जीवित हैं और उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और अपनी गुलहाय अकीदत पेश करते हैं। दोस्तों चलिए अब आपको सुनवाते हैं गोविंद कुमार मेहता की वार्ता। विषय है सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना।
1: भारत में युवाओं की जनसंख्या काफ़ी अधिक है लेकिन 10% भारतीय श्रमिक बलों, 8% अनौपचारिक तथा 2% औपचारिक तौर पर नहीं व्यावसायिक कौशल प्राप्त किया है। लगभग 63% स्कूली छात्र कक्षा 10 तक आते आते विभिन्न चरणों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। देश में लगभग 3.1 मिलियन व्यावसायिक प्रशिक्षण सीटें ही उपलब्ध हैं जबकि लगभग 12.8 मिलियन व्यक्ति हर साल श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक कि इन प्रशिक्षण स्थलों के लिए बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की एक बड़ी संख्या एक और अपनी रोजगार परकता में सुधार लाने के लिए कौशल तक पहुँच नहीं रखती वहीं दूसरी ओर 12.8 मिलियन नौकरियाँ उपलब्ध होती है। वर्ष 2011 के आकलनों के अनुसार भारत में 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगभग 244 मिलियन का कौशल अंतर है। सच्चर समिति की सिफारिशों के अनुसार देश उच्च विकास की अवस्था से गुजर रहा है। यह समय

0: अल्प सुविधा प्राप्त लोगों को कौशल विकास एवं शिक्षा के माध्यम से नए अवसर का लाभ उठाने में मदद करने का है। राष्ट्रीय कौशल नीति में यह परिकल्पना है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान प्रेरक बल है। उच्च और बेहतर स्तर का कौशल रखने वाले देश चुनौतियों और अवसरों का अधिक प्रभावी ढंग से समायोजन करते हैं। भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संक्रमण में है और इसके प्रतियोगी रूप का निर्धारण देश के लोगों में ज्ञान के सृजन, इसको बांटने और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यताओं द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीखो और कमाओ योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को परंपरागत व्यवसाय के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले युवाओं को परंपरागत और आधुनिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके माध्यम से उन्हें न सिर्फ रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे बल्कि वे खुद का रोजगार भी शुरू कर सकेंगे। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को हर माह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सकेंगे। सीखो और कमाओ योजना के 2022 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले युवाओं को अलग अलग परंपरागत और मॉडर्न ट्रेड में कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण और इन्हें बेहतर जीवन स्तर देने के लिए समय समय पर कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें बेहतर भविष्य देने के लिए सीखो और कमाओ योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को उनके शैक्षणिक योग्यता, उनकी रुचि, बाजार में कौशल की मांग और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए उन्हें विभिन्न कौशल में शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे बाजार की मांग और ज़रूरत के अनुसार कौशल प्राप्त कर अपना भविष्य बेहतर बना सकें। साथ ही इस योजना के माध्यम से इस वर्ग के युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना को विभिन्न परियोजना क्रियान्वयन एजेंसीज के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के युवा बाजार में चल रहे ट्रेड्स के अनुसार विभिन्न कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने स्किल को बेहतर बना सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे गोविंद कुमार मेहता की वार्ता। विषय था सीखो और कमाओ अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजना। और इसी के साथ दोस्तों युवाणी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली में ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को

0: लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। देवघर के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी काम अधूरा ना रहे और हर योजना लाभुकों तक अवश्य पहुंचे। इसके लिए उपायुक्त ने जिला प्रखंड और पंचायत स्तर के सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की हिदायत दी। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अनुसार जहर खाने के कारण तबीयत खराब होने पर पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके परिजन की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बीज उपचार की विधि और उसके लाभ की। तो बुआई से पहले बीजों को रसायनों या जैविक पदार्थों से उपचारित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और यह बीजों और शुरुआती पौधों को मिट्टी और बीज जनित रोगों कीटों से बचाती है और स्वस्थ और अच्छी फसल सुनिश्चित करती है। बीज उपचार की अब विधियाँ की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है रासायनिक उपचार, दूसरा है जैविक उपचार और तीसरा है भौतिक या परंपरागत उपचार। तो बात करते हैं रासायनिक उपचार की, तो इसमें बीजों को फफूंदनाशक जैसे कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड की निर्धारित मात्रा से उपचारित किया जाता है। इसे बीज और मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद और शुरुआती कीट नष्ट हो जाते हैं। अब जैविक उपचार की बात करते हैं तो इसमें लाभकारी मित्र जीवाणुओं जैसे राइजोबियम, एजोटोवेक्टर, ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया जाता है और यह विधि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाती है। अब बात करते हैं भौतिक या परंपरागत उपचार की, तो इसमें प्राचीन काल से चली आ रही इस विधि में बीजों को तेज धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी और छिपे हुए कीड़े खत्म हो सके। बीज उपचार के बहुत सारे लाभ हैं ग्रामीण भाइयों। इसमें सबसे पहले रोगों से बचाव के लिए यह बीजों को शुरुआती अवस्था में फफूंद, जड़ सड़न और झुलसा जैसे रोगों से बचाता है। अंकुरण में भी सुधार होता है। बीज उपचार से बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ती है और पौधा मजबूत होता है। शुरुआती मौसम में लगने वाले रस चूसने वाले कीड़ों और दीमक से भी सुरक्षा मिलती है और पौधों का समान विकास होता है जिससे पैदावार में वृद्धि होती है और गुणवत्ता भी सुधरती है।

बीज उपचार बुआई से पहले बीजों को रसायन या जैविक एजेंटों से उपचारित करने की प्रक्रिया है, जिसके प्रमुख लाभों में फफूंद कीटों से सुरक्षा, बेहतर अंकुरण, शुरुआती विकास और वृद्धि और पैदावार में वृद्धि भी शामिल है। यह लागत प्रभावी तरीका है जो फसलों को प्रारंभिक बीमारियों से बचाता है और समान फसल विकास सुनिश्चित करता है। यह बीजों को फफूंद और मिट्टी से होने वाले संक्रमण से बचाता है। उपचारित बीज स्वस्थ होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर अंकुरित होते हैं, जिससे प्रति एकड़ पौधों की संख्या सही रहती है। स्वस्थ बीज से निकलने वाले अंकुर जल्दी और मजबूत विकसित होते हैं। स्वस्थ पौधे और कम बीमारियां सीधे तौर पर उच्च गुणवत्ता वाली फसल और अधिक उपज की ओर ले जाती है। यह कीटनाशकों का छिड़काव कम करता है, जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। यह बीजों को सूखे और अत्यधिक तापमान जैसे कठिन परिस्थितियों को सहने की क्षमता प्रदान करता है और बीजों को भंडारण के दौरान लगने वाले कीड़ों से भी बचाया जा सकता है। तो भी हम बात कर रहे थे बीज उपचार की विधि और उसके लाभ की, और कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक नागपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं बशीर अंसारी और उनके साथी।

0: अभी आप वसीर अंसारी और उनके साथियों की आवाज़ में सुन रहे थे नागपुरी लोकगीत, और कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है कृषि में जैव विविधता। भेंट वार्ताकार हैं कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र छियाकी के दिलीप कुमार पांडे जी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: भाइयों को हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैव विविधता से हमारी कृषि का क्या संबंध है, इसका हमारे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित बातें आज हम साझा करेंगे। पलामू जिला के चियाकी के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक दिलीप कुमार पांडे जी से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार आपको और श्रोता बंधुओं को।
1: जैव विविधता क्या है?
2: जैव विविधता अपने आप में डिफाइंड है शब्द। जैव का मतलब होता है जिसमें जान है, और उसमें विविध प्रकार का, उसका प्रकार चाहे संख्या में हो, चाहे गुण में हो, चाहे किसी और तरीका में हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकृति में विविधता होनी आवश्यक है, और प्रकृति में जितना विविधता होगा उतना ही अस्थायित्व होगा। जैसे हम लोग अपने यहाँ पर जमीन पर देखते हैं, इस धरती को बोलते हैं कि यहीं पर जीवन है। तो जीवन है चाहे पौधे में हो, चाहे पशु में हो, चाहे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम कहते हैं उनमें, विभिन्न तरीका के हैं। तो जहाँ पे जितना विविधता होगा उतना ही ज़्यादा संभावना है, चाहे मानव के हित में हो या मानव के आगे वाली आने वाली पीढ़ी के हित की बात हो। तो विविधता का होना अति आवश्यक है और यही आधार है। तो विविधता ही प्रकृति का आधार है।
1: इसका हमारे कृषि से क्या संबंध?
2: देखिए, कृषि के क्षेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो कृषि का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जब से मानव का विकास शुरू हुआ तब से खेती का विकास शुरू हुआ है
1: जी।
2: लेकिन पहले जब खेती होती थी तो आदमी प्रकृति के साथ खेती करता था। लेकिन हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थिति ऐसी बनी कि प्रकृति के साथ हम लोग तालमेल बैठा नहीं पाए। जनसंख्या बढ़ती चली गई, जनसंख्या के अनुरूप हम लोगों को भोजन की आपूर्ति करनी थी, तो हम लोगों ने मोनोकल्चर अपनाया। जैसे धान की खेती कर रहे हैं या धान में उन्नत प्रभेद है, तो एक ही प्रभेद को
1: बार बार
2: करते गए, हाईलाइट करते गए। उसके जगह पे जो पहले का पुरातन आप खेती देखेंगे तो एक किसान भले छोटे पैमाने पे ही खेती करता था, लेकिन वो रागी, मड़ुआ, मकई, दलहन, तिलहन सभी को करता था। लेकिन आज की स्थिति है कि धान का खेती कर रहा है तो धान की खेती कर रहा है, सब्जी में है तो लौकी की केवल खेती कर रहा है, टमाटर की खेती कर रहा है, तो और उसमें भी केवल एक वैरायटी पे वो डिपेंडेंट हो जा रहा है। इसके चलते हो क्या रहा है कि खेती में लागत बढ़ रही है, किसान को सारा चीज बाजार से खरीदना है। दूसरा इसका प्रभाव ये हो रहा है कि इस पे आपको रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ रहा है। तीसरा चीज, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज के प्रयोग से

0: क्या हो रहा है कि वातावरण पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टी, पानी, हवा तो प्रदूषित डायरेक्ट हो ही रहा है, लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि आज विभिन्न प्रकार के जीव का अस्तित्व खतरा में मिट गया है, यहाँ तक कि मानव का जीवन भी खतरा में मिट गया है, जिसके चलते आप देखेंगे विभिन्न तरीका के रोग हो रहा है, जमीन पानी में सीसा की मात्रा बढ़ जा रही है, और सारे ऐसे जो है हमारे लिए नुकसानदायक हैं, कैंसर्स के कारण हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा अभी के समय में आ गया है। और एक खतरा का समय जब कृषि को हम लोग देखेंगे 5000 वर्ष में जो खतरा नहीं हुआ वो मात्र 60-70 वर्ष में जो हम लोग खेती का नया मॉडर्न तरीका जिनको कहते हैं इनको अपनाने के बाद हो गई है। और यदि हम लोग जैव विविधता की तरफ से पुनर्रूप से नहीं जा रहे हैं तो हमारे अस्तित्व पे संकट है।
1: कीटनाशकों की अगर हम बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: कीटनाशक से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ किसानों को बताना चाहूँगा, सुनने वाले श्रोताओं को, कि भारत में लगभग 170 कीटनाशक पंजीकृत हैं और उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं, बाकी विभिन्न उद्योग के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन उसमें से 110 खेती में प्रयुक्त होते हैं, और उसमें से भी लगभग 75 कपास की खेती में, 35 जो है धान की खेती के लिए प्रयोग होते हैं, और 10 गेहूं के लिए प्रयोग होते हैं। अच्छा। तो जो सबसे ज़्यादा हम लोग उपज करते हैं धान गेहूं, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोचा गया, शिद्दत से लोग सोचे कि जब तक हम लोग विविधता फिर से नहीं लाएंगे
1: तब तक मुश्किल है।
0: और जहाँ तक खाद्य सुरक्षा की हम लोग बात करें, एक सिंपल सा यदि मान लीजिए हम लोग धान उपजा रहे हैं, धान की एक वैरायटी उपजा रहे हैं, तो बाजार में क्या होता है, किसान का लागत तो बढ़ा, लेकिन चूंकि एक ही तरीका का फसल होने के चलते यदि किसी कीड़ा का प्रकोप हो रहा है तो सारा का सारा फसल मारा जा रहा है, तो खाद्य सुरक्षा पे एक संकट आ गया
1: जी।
0: दूसरा चीज, यदि किसान अपना उपज बाजार में लेकर के जा रहा है तो एक ही तरीका का उपज होने के चलते उसको बाजार में मूल्य भी कम आ रहा है, तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके आगे जब हम लोग पोषण सुरक्षा की बात करें, तो एक तरीका का जो हम लोग बोलते हैं एक ही तरीका का चीज जब हम लोग यूज में कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, तो पोषण सुरक्षा जैसे उसको न प्रॉपर वे में कार्बोहाइड्रेट, न विटामिन, न मिनरल, ये सब की सही मात्रा में पूर्ति भी नहीं हो पाती है, और जैव विविधता होने के चलते प्रकृति खुद से चयन करता है। जैसे हम लोग भारत की बात करें या पलामू की बात करें, तो पलामू में हम लोग खास कर देखें, आज आप यहाँ से जाएंगे तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आप देखेंगे कि पलाश का पेड़ आपको बहुत सुंदर हरियाली दिखेगा, बाकी सब खेत का मुरझा जा रहा है, सब्जी की खेती में पानी पटाना पड़ रहा है, तो पलाश के कुल के जो भी दलहनी कुल के वैसे पौधे हैं उनका हम चयन कर सकते हैं। आंवला का आप देखेंगे, आंवला पानी नहीं डालना पड़ रहा है, बेर है उसमें पानी नहीं डालना पड़ रहा है, लेकिन हम कुछ नया यदि सेब का यहाँ पे ये करें, तो हमने अपने क्षेत्र में विविधता नहीं लाया, हम एक मोनोकल्चर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो विविधता क्षेत्र के अनुसार भी हमको विविधता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, नई नई वैरायटी जो उससे है उनको अपने से भी डेवलप होने देना पड़ेगा,
1: ताकि तो, एक ही खेत में तरह तरह की फसलें उगा सके,
0: वो विविधता उससे आएगी, अब विविधता आएगी तो अस्थायित्व आएगा। जैसे हम लोग कोई बीज बनाते हैं तो उसका काल होता है 8-7-8 वर्ष तक वो स्टेट में रहेगा, संतुलन रहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो वैरायटी जो है नीचे गिरते चला जाता है, लेकिन जो प्रकृति के रूप से चयनित होता है उसमें अस्थायित्व 100 साल 200 साल तक रहता है, और उसका जो गुण है प्रकृति के द्वारा चयन किया हुआ है उसका आधार मजबूत होता है। इसके अलावा लोगों को आजीविका की भी सुरक्षा मिलती है, डिफरेंट तरीका का लोग खेती करेंगे, खेती में जैसे हम लोग बोलते हैं कि खेती में भी विविधीकरण आपको लाना है, जैसे खेती में विविधीकरण आपको लाना है तो फसल के साथ आप उधान के फसल जैसे फल को उपजाएंगे, फल को भी उपजाने की बात हुई तो उसमें एक लेवल पे जैसे सबसे ऊंचा पौधा, उसके बाद बीच में पौधा, फिर नीचे में ग्राउंड में मसाला की खेती, तो वहाँ पे भी विविधीकरण हम ला सकते हैं। इसके अलावा जानवर की भी हम लोग जानवर को भी उसमें लाएंगे विविधता, तो खेती में विविधता लाने के लिए हमको सारा चीज़ को लाना पड़ेगा, और उस सब सारे चीज़ को हम लाएंगे तो हमारा लागत भी कम होगा, क्योंकि एक चीज का उत्पाद दूसरे में प्रयोग होगा, दूसरे को उत्पाद तीसरे में होगा, तो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होगा, और इसके चलते हमारी आज

0: जीविका की भी सुरक्षा होगी और जहां तक हम लोग बोलेंगे जलवायु की अनुकूलता, तो जो हमारे पलामू का आज स्थिति आप देख रहे हैं, झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, तो यहाँ की जो अनुकूल है तो जलवायु को भी अनुकूलता प्रदान करेगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कुछ ऐसे हम लोग पतझड़ वाले पेड़ यहाँ पे ज्यादा होते हैं, लेकिन पतझड़ वाले पेड़ को आप देखेंगे कि अभी उनमें पूरा पत्ती आ गया है, तो उनमें जब पूरा पत्ती आ गया आप जंगल में चलेंगे तो शीतलता प्रदान करेंगे और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो हमारे यहाँ जलवायु का भी अनुकूलता होगा, जलवायु को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। आज चूंकि पेड़ में पत्ती कम होने के चलते आप देखेंगे कि गर्मी हम लोग महसूस करते हैं, तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जलवायु अनुकूल जो चीज था उस चीज को विविधता के रूप में हम लोग को बढ़ाना है।
1: कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के संदर्भ में किया जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है, यही माना जाता है।
0: एकदम सही। मैं यहाँ पे और लोगों को एक बताना चाहूंगा कि यदि आपके यहाँ विविधता है तो फसलों में जो मधुमक्खी है, तितली है, उनके द्वारा परागण भी होता है, और आपके यहाँ विविधता नहीं है और हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो उनकी संख्या कम होगी और जिसके चलते क्या होगा, फसल का उत्पादन भी कम होगा कृषि के क्षेत्र में। तो विविधता आप जितने लाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेती में वो मरते चले जा रहे हैं, उनमें जब विविधता होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी संख्या होगी उतना ही हमारा खेत जो है उपजाऊपन बढ़ेगा। तो विविधता को एक सीमित शब्दों में हम लोग नहीं मान सकते हैं, ये प्रकृति के साथ जब तक पृथ्वी है तब तक विविधता रहेगी, तब तक हम टिके हैं। जिस दिन विविधता खत्म हो जाएगी हमारे पास, आप इस बात को समझिए कि एक किताब हम लोग केवल लेकर के चलें तो किताब आपके जीवन को सुधार नहीं सकता है, लेकिन एक लाइब्रेरी आप बना लें तो आपके जीवन को सुधार सकता है। तो इसी तरीका से विविधता एक लाइब्रेरी की परिकल्पना है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, कहीं के भी क्षेत्र में जब तक आप विविधता नहीं लाएंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइव के लिए विविधता का होना अति आवश्यक है और खेती जो कि हमारा विभिन्न तरीका के रोजगार को देता है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं आजीविका की सिक्योरिटी, चाहे जलवायु की सिक्योरिटी, तो ये सब कृषि से है। तो कृषि में भी तो विविधता बहुत जरूरी है।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और जैव विविधता से संबंधित जानकारियां साझा की हमारे किसान भाइयों के साथ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार पांडे जी से ली गई भेंटवार्ता, विषय था कृषि में जैव विविधता, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और कार्यक्रम में अब बातें करते हैं जैविक खेती से लाभ की। ग्रामीण भाइयों, वर्तमान समय में खेती करने की जो प्रणाली है पूरे तरीके से बदल चुकी है, जिसका एकमात्र कारण है बढ़ती जनसंख्या, जिसकी वजह से अधिक खाद्यान्न उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जिसके कारण खेती में अधिक रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। जैविक खेती को लोग भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से हमारा भोजन भी विषाक्त होता जा रहा है, जबकि जैविक खेती भारतीय कृषि की एक प्राचीन पद्धति है, जो भूमि के प्राकृतिक गुणों को बनाए रखने के साथ हमें रसायन मुक्त शुद्ध भोजन प्रदान करती है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने में मदद करती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती में जो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हीं को खेती में इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खेती में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद, फसल अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं, और प्रकृति में उपलब्ध जीवाणुओं, मित्र कीट और जैविक कीटनाशकों द्वारा फसल को हानिकारक जीवाणुओं से भी बचाया जाता है। किसानों की पैदावार का अधिक

भाग खेती में प्रयोग होने वाले उर्वरकों और कीटनाशकों पर ही खर्च हो जाता है। यदि किसान खेती में अधिक मुनाफा या फायदा कमाना चाहते हैं तो उन्हें जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जैविक तरीके से उगाए गए अनाज में कई सारे खनिज तत्व उपस्थित होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, जबकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग से ये खाद्य पदार्थ अपनी गुणवत्ता खो देते हैं। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में काफ़ी कमी आती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इस घटती हुई मिट्टी की उर्वरक क्षमता को देखते हुए आज के समय में खेती में जैविक खाद का उपयोग जरूरी हो गया है। और जैविक, जैसे खेतों में कोई जुताई नहीं करना है, यानी न तो उनमें जुताई करना है और न ही मिट्टी पलटना है। धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों के प्रवेश और केंचुओं और छोटे प्राणियों और सूक्ष्म जीवाणुओं के जरिए कर लेती है।

किसी भी तरह की तैयार खाद या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग न किया जाए, निराई गुराई न की जाए, न तो हल से और न ही शाकनाशियों के प्रयोग द्वारा। खरपतवार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बुनियादी सिद्धांत यही है कि खरपतवार को पूरी तरह समाप्त करने की बजाय नियंत्रित किया जाना चाहिए। रसायनों पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहना है। अधिक जुताई और उर्वरकों के उपयोग जैसी गलत प्रथाओं के कारण से कमजोर पौधे उगना शुरू हुए हैं, तब से ही खेतों में नई नई बीमारियों और कीट असंतुलन की समस्याएं खड़ी होनी शुरू हुई है। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण जो क्षमता है बढ़ती है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है, भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है, कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में भी कमी आती है। तो हुई बातें जैविक खेती से लाभ की, और हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी से अब दीजिए रागिनी कुमारी को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी पालन की। तो बकरी पालन ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत और कम मेहनत से किसान भाई शुरू कर सकते हैं। पशुधन में बकरी एक विशेष स्थान रखती है। इसका बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इसे सभी जाति के लोग भी पाल सकते हैं और अपने आमदनी का भी जरिया बना सकते हैं। आज जहां अन्य पशुपालन महंगे आवास व्यवस्था, चारेदाने की व्यवस्था और उचित दवा व्यवस्था के कारण प्रभावित हो रहा है, वैसे में बकरी पालन कम लागत, साधारण आवास और मामूली देखरेख में गरीब किसानों के जीविकोपार्जन का स्रोत बन रहा है। आज आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न लोग भी इनकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और बकरी एक छोटा पशु है जिसे बहुत कम चारेदाने की जरूरत होती है। बकरी अपना पेट आसानी से भर लेती है। इन्हें प्रतिदिन आधे किलो से अधिक दाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी देखभाल की क्रिया बहुत ही सरल है। हमारे यहाँ बकरियाँ मुश्किल से आधे से एक किलो दूध प्रतिदिन दे पाती है और हमारे देश में ऐसी भी बकरियाँ हैं जो 3-4 किलो दूध प्रतिदिन भी दिया करती हैं। यदि ऐसे बकरियों से साधारण बकरियों का प्रजनन कराया जाए तो हम 3 किलो दूध प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। यह किसान के प्रतिदिन के दूध की खपत को भी पूरा कर सकती है। यह कम जगह में भी रह सकती है। लगभग एक गाय के बदले 5 बकरियों का भी पालन किया जा सकता है। भोजन की अल्पत्ता जैसे कठिन परिस्थितियों में भी यह जीवन यापन कर सकती है। बकरी अपना भोजन कटीले पेड़ पौधों से भी खोज लेती है जिसे गाय प्रायः पसंद नहीं करती है। बकरी आदिकाल से मानव के साथ विचरण भी करती आई है। इसे कम खर्चा में पाला जा सकता है और घर की वृद्ध महिलाएं जो भारी भर कम काम नहीं कर सकती हैं बकरी पालन करके लाभ उठा सकती हैं। गरीब से गरीब किसान या मजदूर या महिलाएं बकरी पालन कर सकती हैं। बकरी पालन के लिए किसी विशेष प्रकार की तकनीक या आवश्यकता नहीं होती है। यह कम लागत और विपरीत परिस्थितियों में भी पाली जा सकती है। बकरी 9 से 12 महीने की आयु में भी प्रजनन कर सकती है। सामान्यतः एक वर्ष में 2 बार बच्चे भी देती है, लेकिन प्रत्येक बार में 2 या 2 से अधिक बच्चे देती है। यह पूरे वर्ष रोजगार प्रदान करती है। कम समय में इससे दूध और मांस भी प्राप्त किया जा सकता है। बकरी का दूध मनुष्य के बच्चों के लिए भी अधिक पौष्टिकारक भी होता है। इनसे अच्छी गुणवत्ता वाली मांस की प्राप्ति होती है और इसका मांस अन्य पशुओं के मांस की तुलना में अधिक पसंद भी किया जाता है। इसके मल मूत्र से उच्च गुणवत्ता की खाद भी तैयार की जाती है जो किसान के की खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाती है। इसके चमड़े और बालों से अतिरिक्त आय भी मिलता है और बकरियों में बीमारियां अपेक्षाकृत कम होती है। बकरी पालन यदि आधुनिक तरीके से किया जाए तो आय में 2 से 3 गुनी वृद्धि की जा सकती है और किसान जितनी अधिक बकरी पालेगा उसे उतना ही आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भी झारखंड में बकरी पालन का कार्य सदियों से किया जा रहा है। यहाँ के आदिवासियों और अन्य गरीब लोगों के बीच मांस एक लोकप्रिय आहार है। बकरी अन्य पशुओं की तुलना में यहाँ के किसानों के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल या चारागाह की कमी नहीं है। बकरी पालन कम से कम लागत में किया जा सकता है और इस पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है। बकरी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने के कारण पालन पोषण बड़े पशुओं की तुलना में आसान है। परिवार की महिलाएं या बच्चे आसानी से बकरियों की देखभाल कर सकती हैं और इनमें बीमारियां अपेक्षाकृत कम होती हैं और ये आमदनी के और मांस के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बकरियों के कुछ प्रमुख देसी नस्लें हैं किसान भाइयों, और जैसे ब्लैक बंगाल, बारबरी, बीटल, मालाबार, जाकराना, गंजम, चेगू, जमुनापारी, सिरोही, मारवाड़ी, संगमनेरी, कश्मीरी, कच्छी। ब्लैक बंगाल की बात करते हैं तो इस नस्ल के बकरियां झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बांग्लादेश में पाई जाती है। इसका रंग मुख्यतः काला होता है और कुछ बकरियों में भूरा और सफ़ेद बाल देखने को भी मिलता है। काले रंग के कारण इसे ब्लैक बंगाल भी कहा जाता है।

0: छोटे कद की होती है। इसका शरीर गठीला होता है, कान छोटा, खड़ा और आगे की ओर निकला रहता है। नर और मादा दोनों में 3 से 4 इंच का आगे की ओर निकला हुआ सींग भी पाया जाता है। वयस्क नर का वजन 18 से 20 किलोग्राम और मादा का वजन 15 से 18 किलोग्राम का होता है। जमुनापारी हमारे देश में पाए जाने वाली अन्य नस्लों की तुलना में सबसे ऊंची और लंबी प्रजाति है। इसका सींग छोटा और चौड़ा होता है, कान 10 से 12 इंच लंबा और लटकता रहता है। इसका शरीर बेलनाकार होता है, शरीर पर सफ़ेद और लाल रंग के लंबे बाल पाए जाते हैं। उसी तरह एक बीटल भी प्रजाति है। इस नस्ल की बकरियां देखने में जमुनापारी बकरियों की तरह होती है, लेकिन ऊंचाई और वजन की तुलना में कुछ छोटी होती है और इसका कान लंबा, चौड़ा और लटकता हुआ होता है। नाक जमुनापारी की तुलना में कम उभरा हुआ होता है और सींग बाहर और पीछे की तरफ घुमा हुआ होता है। और बारबरी की बात करते हैं तो इस नस्ल की बकरियां मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और सिरोही नस्ल की जो बकरियां हैं वो राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं। और इस नस्ल की बकरियां का रंग सफ़ेद और भूरा मिश्रित होता है। इसके कान लंबे होते हैं और शरीर का बाल मोटा और छोटा होता है। पूंछ मुड़ा हुआ और पूंछ के बाल खड़े होते हैं। यह सालाना 1 बयान में 2 बच्चों को जन्म देती है। इस नस्ल के बकरों का प्रयोग भी अन्य छोटे नस्लों के नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। इस नस्ल की बकरियाँ दूध और मांस दोनों के लिए उपयुक्त होती है। तो किसान भाइयों, अभी हम बातें कर रहे थे बकरी पालन की, और कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
2: मिले

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी में। और कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता एक महिला किसान से। और भेंट वार्ताकार हैं ओपोलिना ओडिया बिड़मा नावाडी रामगढ़ की, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाई, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के रामगढ़ प्रखंड के नावाडी गांव की एक महिला कृषक अपलेना उड़िया, जो पारंपरिक रूप से खेती बाड़ी करती हैं, मोटे अनाजों की खेती करती हैं और बृहद पैमाने पर खेती करती हैं। अब अच्छा खासा लाभ कमाती हैं, अपने परिवार को चलाती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं बच्चों को। और अपलेना

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: और आपको भी नमस्कार करते हैं।
0: नमस्ते। ये अभी आप खेतों की क्या क्या तैयारी कर रही हैं खरीफ के लिए?
1: अभी हम खेतों की तैयारी, अभी देखिए सबसे पहले तो हम लोग का मकाई का बुआई सबसे पहले होती है मकाई का, फिर पानी वाला धान जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्यारी में नहीं लगाते हैं पानी, क्यारी
0: अच्छा,
1: में
0: अच्छा।
1: वो वाला धान का अभी पानी नहीं है इसीलिए उसका जुताई चल रहा है। उसको हम लोग मैंने पहले ही उसको खेत तैयार कर देते हैं, अगर मैंने घास ओस मरने के लिए उसको पहले ही जुताई करके खेत को तैयार कर रहे हैं अभी। उसके बाद पानी गिरेगा, उसके बाद पानी गिरने के बाद हम लोग उसको गाछी इधर तैयार करेंगे, पानी गिरेगा तो गाछी डलाएगा, उसके बाद उसको लगाने का प्रयास करेंगे। फिर मकाई का अभी इन साल तो पानी गिरते जा रहा है, पानी बरसते जा रहा है, इसीलिए बहुत अच्छा मौका दिया है मकाई खेती करने का, खेत तैयार करने का। हम लोग अभी ऐसे मकाई लगाने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं खेत को।
0: अच्छा।
1: जब भी पानी गिरेगा मैंने 15 जून के बाद ही उसको लगाते हैं मकाई।
0: अच्छा।
1: उसके जब पानी गिरने लगेगा तो हम लोग उसको लगाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद अभी मड़ुआ का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी गर्मी में ही उसको गच्ची डालने के लिए हम लोग उसको जितना भी आलियर का त्वार है उसको हम लोग पहले उसको जलाते हैं, जहाँ गच्ची डालते हैं उस जगह को जलाते हैं, इसीलिए जलाते हैं ताकि वहाँ का घास फूस जो भी हो वो मरे।
0: अच्छा।
1: और केवल गाछी मड़ुआ केवल अच्छा से हो इसीलिए उसको पहले जलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग राख के ऊपर ही हम लोग खाद जो बकरी का हो या गऊ का हो उसको हम लोग डालते हैं,
0: उसमें मिला देते
1: हैं। मिला देते हैं।
0: उसके
1: बाद जब पानी गिरेगी, अभी तो नहीं अति किए हैं उसको, बस उसको जला करके उसको तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जब पानी गिरेगा तो उसको हम लोग हल चला करके उसको हम लोग तैयार कर देते हैं गाछी डालने के लिए।
0: जी, जी।
1: उसके बाद हम लोग उसको बढ़िया से समतल करके ऊपर में हम लोग गाछी छीट देते हैं मड़ुआ का उसी लेवल पर। उसके बाद हम लोग उसको ऊपर हाथ से माने थोड़ा थोड़ा उसको मट्टी में छुपना चाहिए, ज़्यादा नहीं छुपना चाहिए नहीं तो नहीं जमेगा, उसको हल्का हल्का छुपना चाहिए, इसीलिए हम लोग हाथ से अति करके उसको कर देते हैं, उसके बाद बढ़िया जमता है।
0: अच्छा।
1: इस प्रकार माने हम लोग मड़ुआ की खेती बेहतर हम लोग कर रहे हैं। और पहले बहुत खेती होता था मड़ुआ, लेकिन मड़ुआ का जो भी हम लोग इसका जो भी महत्व है लाभ है उसको हम लोग नहीं जानते थे, इसीलिए मड़ुआ का खेती तो करते थे लेकिन उसको उतना ध्यान नहीं देते थे खाने का। लेकिन अभी उसका महत्व जैसे हम लोग समझ गए हैं कि मड़ुआ खेती करने से खाने से क्या महत्व है, इसी की वजह से हम लोग उसको खेती करके हम लोग खाने खाते हैं, बेचते नहीं हैं उसको।
0: जी जी।
1: फिर ग्रामीण किसान लोगों को भी, जैसे किसानों से हम लोग जुड़े हुए हैं, किसान लोगों से किसान भाई बहनों से हम लोग काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जा करके संगठन बना करके वहां जा करके हम लोग मोटे अनाज जो भी खाने से क्या फायदा है उसको हम लोग बताते हैं। जैसे मोटे अनाज मड़ुआ मकाई बजरा चाहे गोंदली हो सावा हो उस सब क्यों हम लोग इसको लुप्त कर रहे हैं और उसके पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं, हाइब्रिड के पीछे हम लोग जा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: इस चीज़ को हम लोग ग्रामीण किसानों को बताते हैं और इस सब को बरकरार रखने के लिए हम लोग बोलते हैं। क्या माने मड़ुआ जो भी हम लोग जिसका कमजोरी है जिसका ब्लड नहीं है जो कमर दर्द जोड़ जोड़ दर्द
0: उसका उपयोग
1: उसको मड़ुआ का हलवा चाय रोटी खाने से ब्लड भी बनता है, कैल्शियम भी हड्डी में अति करता है।
0: ये तो मड़ुआ की खेती की बातें हो रही थी।
1: जी हाँ।
0: और सावा कोदो की अगर हम बात करें तो
1: सावा कोदो का भी वही चीज है, सेम टू सेम वही है। जैसे उसका महत्व को आप बोल रहे हैं ना, महत्व भी वही है उसका। जैसे पहले बुजुर्ग लोग हम लोग का दादा दादी जे भी थे पहले वो लोग वही सब खेती करके खाते पीते थे। पहले धान की खेती हम लोग का में नहीं होता था, क्यारी नहीं था, हम लोग का टाण टिकोर में खाली घोड़ा धान केवल लगाते थे
0: जी।
1: और मकाई

0: और दलहन में वही कुर्थी अरहर सब अरहर सब
1: कुर्थी वगैरह की खेती होती है यहाँ।
0: खेती होती है, बहुत अच्छा होता है कुर्थी का भी करते हैं इसका इसका कुर्थी का दाल। आप कुर्थी का पूछे तो हम उसका भी आपको हम बता दे रहे हैं। कुर्थी बहुत कोई नहीं पसंद करते हैं, लेकिन कुर्थी दाल खाने से कितना उसका लाभ है, उसका महत्व है, लोग नहीं जानते,
1: नहीं जानते,
0: नहीं पसंद करते हैं, बहुत कोई नहीं पसंद करते, लेकिन हम लोग बहुत पसंद करते हैं उसका। जिसका पथरी है पेट में, हम लोग खाते खाते कुछ माने पत्थर सब घुस जाता है तो उसी में पथरी का असर करता है जी। अगर कुर्थी दाल अगर आप डेली खाते हैं तो वो आपको पथरी गला देगा, इसीलिए बहुत महत्व है कुर्थी दाल खाने के लिए। इसीलिए हम लोग इसका, हम लोग ये कुर्थी दाल को लगाने के लिए हम लोग नहीं छोड़ते हैं।
1: तो कुल मिलाकर के अभी मड़ुआ की खेती की तैयारी चल रही है।
0: हाँ।
1: और इस बार बृहद पैमाने पर मड़ुआ की खेती करने की तैयारी हो रही है।
0: बहुत
1: पिछला साल कितना उत्पादन हुआ था?
0: बीते साल देखिए हम लोग को केबी की तरफ से भी मिला था, चचार कीजी मिला था, फिर ब्लॉक तरफ से भी चचार कीजी मिला था। हम लोगों ने लगाया, मैंने चार कीजी तो मैं नहीं लगाई, लेकिन मात्रा मैं दो कीजी लगाई थी। सबको तो हम लगाए नहीं, लेकिन इसमें हमको चार क्विंटल का फायदा हुआ।
1: चार केजी में चार क्विंटल
0: जी। और क्या बोलेंगे, हम लोग की तरफ तो नील गाय भी बहुत है।
1: हाँ, हाँ।
0: इसीलिए थोड़ा सा बचाव के लिए भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है उसको। हम लोग तो दिन को तो कैसे नो रखवाली कर लेंगे, लेकिन रात में आके खा जाता है, इसीलिए उतना बढ़िया नहीं।
1: तो नील गाय
0: हुआ।
1: का प्रकोप आप लोग तरफ भी है?
0: हम लोग तरफ भी है, बहुत है नील गाय। दिन में भी गाय माने क्या बोलेंगे, गाय बकरी की जैसा वो लोग चर जाता है, डरता ही नहीं है उसको, क्या कीजिएगा बताइए।
1: पड़ा कावला का छोड़ना वगैरह से नहीं भागता है?
0: भागेगा, लेकिन उतना नहीं डरता है वो लोग, नहीं ना डरेगा। हाँ, रात में तो रात में, दिन में तो कैसे ना हम लोग भगा ही लेंगे, लेकिन रात में तो कैसे कीजिएगा, दिक्कत होता है।
1: तो घेरानी उरानी करने से भी कोई
0: घेरा कितना को घेरा लगाइएगा सर?
1: सही बात है,
0: घेरा लगाने
1: एक
0: से
1: एक एकड़ खेत में कहाँ घेरा?
0: और मड़ुआ माने दो केजी में एक एकड़ आपका आराम से लगेगा, गाछी आपका नहीं खत्म होगा।
1: अच्छा
0: जी हाँ,
1: लेकिन बचाना है इन लोग से
0: जी, लेकिन बचाना है। और
1: अब सब्जियां की खेती क्या करते
0: हैं? सब्जियां का खेती, हाँ, सब्जी का खेती भी हम लोग करते हैं। अभी मेरा बगान में वही गर्मी वाला सब्जी है।
1: अच्छा।
0: जैसे अभी कद्दू है, करेली है, नेनुआ है, बोदी है, भिंडी है, और बस उतना ही है अभी। अभी कद्दू एकदम बरकरार अभी फल रहा है।
1: अच्छा।
0: और जो नेनुआ जो बोल रहे हैं अभी अभी शुरू हुआ है, और बोदी का भी अभी अभी फूलना शुरू हुआ है।
1: अच्छा, मतलब लेट से लगा दिए?
0: लेट से थोड़ा सा लगा दिए हैं, इसीलिए
1: तो निकलेगा मई जून फर्स्ट वीक तक का। हमको लगता है कि प्रथम सप्ताह तक आप उत्पादन लेकर के बेचेंगे?
0: जी हाँ
1: जी
0: हाँ, उसको तो जब तक मैंने मकई हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक वो रहता ही है।
1: हाँ, हाँ।
0: जी हाँ।
1: और वो मकई लगाने में आपको जून का तीसरा चौथा पखवाड़ा
0: जी, उसी के बाद ही हम लोग लगाएंगे।
1: हाँ, चौथा सप्ताह तक भी चला जाएगा।
0: जी हाँ।
1: और पशुपालन?
0: पशुपालन में मेरे पास अभी शुक्र के वाला है।
1: अच्छा
0: जी हाँ।
1: कितने शुक्र हैं?
0: दो शुक्र हैं। अच्छा। दो माता ही है।
1: अच्छा, अच्छा
0: जी
1: अच्छा। तो अब शुक्र पालन चल, बाकी गाय वगैरह नहीं रखे?
0: गाय वगैरह अभी नहीं रखे हैं, थोड़ा सा रखने का जगह की कमी से, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि गाय भी रखेंगे। और फिर
1: अच्छा, एक बात है भाई, यहाँ पर आप लोग कृषि के क्षेत्र में ढेर सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, आप लोग योजनाओं का लाभ ली?
0: योजना का हम लोग लाभ लिए हैं जैसे कृषि के माध्यम से।
1: जी जी
0: हाँ, हम लोग के बीके से भी हम लोग को मिला है, जैसे बीज वगैरह मिलता है। इस बार तो उतना नहीं मिला था, अरहर और क्या बोलते हैं ये सरसों और मड़ुआ मिला था, फिर ब्लॉक से मिला था, और एक बार बोलो किबी की तरफ से शुक्र मिला था।
1: अच्छा, अच्छा
0: जी, उसके बाद तो नहीं मिला है।
1: बीज वितरण से जुड़ी रहती हैं?
0: जी हाँ, बीज वितरण से हम लोग जुड़े हुए हैं किबी की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से, चाहे ब्लॉक तरफ से।
1: कृषि यंत्र भी कुछ कुछ मिलते रहते होंगे?
0: कृषि यंत्र भी मिलता है, मिला है अभी, जैसे कृषि करने के लिए जैसे खुरपी वगैरह
1: ये सब तो सामान्य यंत्र मिलते जाते हैं।
0: सामान्य यंत्र मिलता है।
1: और जैसे आपका कीटनाशी छिड़काव हो गया, चाहे और भी पंप वगैरह, ये सब नहीं?
0: वो सब भी मिला है हम लोग को।
1: मिला है ना
0: जी, कृषि वैज्ञानिक केंद्र की ओर से ही मिला है।
1: अच्छा,
0: वो सब भी स्प्रे माने छिड़काव करने के लिए कीटनाशक जो
1: प्रशिक्षण क्या क्या चीज का लिए?
0: प्रशिक्षण हम लोग का हर अथी में मिलता है, जैसे जो भी बीज वितरण होता है कृषि वैज्ञानिक केंद्र में, अगर रहर का वितरण हो रहा है तो रहर का ही प्रशिक्षण देंगे वो।
1: अच्छा।
0: धान का अगर वितरण कर रहे हैं तो धाने का प्रशिक्षण देंगे, अगर शुक्र का दे रहे हैं तो शुक्र, अगर दे रहे हैं तो शुक्र पालन का ही प्रशिक्षण देंगे, इस प्रकार होता है। और जैसे फलदार वृक्ष का भी हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: आपके परिवार में कितने सदस्य?
0: मेरा परिवार में 4 बच्चे हैं।
1: सब पढ़ रहे हैं?
0: जी हाँ, और हम लोग दोनों जन हैं। एक बड़ा बेटा को शादी करा दिए हैं, उसका दुगो मेरा नाती होती है दुगो।
1: और सबका यही खेती बाड़ी से सबका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह सब इसी से चल रहा है?
0: अब खेती कृषक हैं तो
1: सबका इसी से मतलब कि भरण पोषण सब कुछ,
0: जी हाँ,
1: घर का कार्य सब कुछ इसी से चलता है। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़िए अपोलेना उड़िया जी, और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार आपको।

अभी आप सुन रहे थे एक महिला किसान ओपोलिना ओड़ैया से ली गई भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और कार्यक्रम में अब बातें अंतर्वर्ती खेती से लाभ की। मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच दूसरी फसल उगाने की तकनीक है या विधि भूमि को पूरा उपयोग करके अंतर्वर्ती खेती का लाभ, अतिरिक्त साधन 20-30% अतिरिक्त आमदनी देती है, कीटों का प्राकृतिक बचाव करती है और अंतर्वर्ती खेती के फायदे, खेत का बेहतर इस्तेमाल, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है। अंतर्वर्ती खेती के बहुत सारे लाभ हैं किसान भाइयों, अधिक पैदावार और मुनाफा भी होता है। समान लागत, पानी और भूमि से एक साथ दो फसलें मिलने पर कुल उत्पादन और लाभ बढ़ जाता है। दलहनी फसलें जैसे मूंग, चना, मटर वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती है, जिसके मुख्य फसल को प्राकृतिक खाद मिलती है। अंतर फसल खेती के लाभ फिर है कीट और रोग नियंत्रण। अलग अलग फसलें होने से एक विशेष फसल के कीट या रोग पूरी तरह नहीं फैल पाते हैं। मुख्य फसल के खाली स्थानों को दूसरी फसलें ढक लेती है, जिससे खरपतवार नहीं पनप पाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग। अलग अलग जड़ों की गहराई वाले फसलें भूमि के अलग अलग स्तरों से पानी और पोषक तत्व खींचती है। यदि प्राकृतिक आपदा या किसी बीमारी से एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी फसल से किसान का नुकसान कवर हो जाता है।

0: किसान भाइयों, अभी हम बातें कर रहे थे अंतर्वर्ती खेती से लाभ की, और हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए चलते चलते आज की नसीहत, फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए विधियां, यांत्रिक विधियां और रासायनिक विधियों का समन्वित उपयोग सबसे अच्छा होता है। बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई, कतारों में बुआई, फसल चक्र अपनाना और समय पर निराई गुराई करना सबसे प्रभावी तरीका है। तो इसी जानकारी के साथ किसानवाणी कार्यक्रम से अब दीजिए रागनी कुमारी को अनुमति। नमस्कार।
1: रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेसा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा के देवासी हेमब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने आज उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश

0: में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 लागू किया गया है।
1: हम जब से इस राज्य में काम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते थे। ये कहते थे कि अब टू इंटर तो पढ़ाई अच्छी है। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन में सम्मेलन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का कार्य करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा।
2: 30 जून से 29 जुलाई तक है, इसी पीरियड में किन किन वोटर का नाम अभी मतदाता सूची में है उनका एनुमरेशन फॉर्म दिया जाएगी, वो अपने सिग्नेचर करके वो प्रीवियस एसआईआर का डिटेल होगा मतलब उसका साथ में करेंगे, उसके लिए बीएलओ आपका सहयोग करेगी। नया वोटर 30 जून से ही एप्लीकेशन दे पाएंगे। किसी भी एक भी भारत नागरिक उनका 18 उम्र हो गया वो झारखंड में रहता है उनका नाम जरूर आएगी, उनके लिए हम लोग सभी जगह पर ईआरओ एईआरओ एडिशनल एईआरओ बीएलओ बीएलओ सुपरवाइजर वॉलंटियर्स आपका मदद करेंगे।
0: राज्य में पेसा झारखंड नियमावली 2025 को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए रांची में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली से ग्राम सभाओं को और अधिकार मिलेंगे। उन्होंने हर जिले में पेसा कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।
3: पेसा अधिनियम को पारित किया गया, इस पर सरकार बहुत ही गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विभाग के सभी लोग और जिला प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी जो शेड्यूल एरिया से जुड़े हुए हैं पूरी तत्परता से इस काम को कर रहे हैं। जो पारंपरिक ग्राम सभा के हेड्स होंगे उन लोगों की नियुक्ति वो जारी है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लिए यह बहुत संवेदनशील है और हम लोग इसको कैसे बेहतर कर सके इसके लिए सभी लोग लगे।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। इस बैठक में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करने और परिचालन सुरक्षा में सुधार करने पर भी जोर दिया गया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में धुरवा स्थित पुलिस मुख्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 25 नक्सलियों और जेजेएमपी के दो उग्रवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 426 मामले दर्ज हैं। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास और उनकी मांगों को पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
4: मैं आज यहाँ समर्पण करने वाले 27 साथियों को स्वागत करती हूँ। उनके परिवार को मैं दिलासा देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्हें स्वागत दिया गया है आगे भी हम लोग उनका ख्याल रखेंगे। जितने माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तथा जो पूर्व में भी सरेंडर कर चुके हैं उनका सभी का जो भी आवश्यकताएं हैं अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसे हम लोग सुनियोजित ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे।
0: कोल्हान के सारंडा में सक्रिय 25 से अधिक नक्सलियों के एक साथ समर्पण करने पर राज्य के

0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मुख्यधारा से भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है।
1: आज सरकार की नजर, सरकार की आवाज पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है और निश्चित रूप से सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है कि हर व्यक्ति सरकार के साथ जुड़े, कोई भी ना छूटे, और आज उसका परिणाम है कि लोग तेजी से मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं।
0: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सांसद कालीचरण मुंडा के आवासीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद कालीचरण मुंडा और जिला प्रभारी चौतो उरांव विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में इन दिनों तेज धूप और गर्मी के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के 11 जिलों में अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। इधर मौसम विभाग ने बोकारो, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघगर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम ने थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज उन्हें विधानसभा में सम्मानित करते हुए कहा कि प्रतिभा कभी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती।
2: हमारी झारखंड की बेटी, देश की बेटी देवासी थाईलैंड में जाकर के गोल्ड मेडल लेकर के आया है। ये हम सबों के लिए एक गौरव का क्षण है। जब मेधा कोई गरीब और अमीर को पहचान के नहीं होता है, आज भी वैसे मेधावी हर जगह उपस्थित। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है समाज को, सरकार को, सारे लोगों को ऐसे मेधा को ढूंढ निकालना।
0: हॉकी इंडिया ने 29 मई से 6 जून तक जापान के काकामिगाहारा में होने वाले पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के दो खिलाड़ी आशीष तानीपुरती और प्रेमचंद सोई को जगह मिली है। उनके चयन पर हॉकी झारखंड और खेल विभाग ने पूरी टीम को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने रांची में दो दिवसीय कुलपति सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, सुधार के लिए लागू किया गया झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में कहा, एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटे। राज्य में पेशा नियमावली 2025 को बेहतर ढंग से लागू कराने के लिए आयोजित की गई दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। थाईलैंड में आयोजित एयरगन राइफल शूटिंग प्रतियोगिता की गोल्ड मेडलिस्ट जामताड़ा की देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया सम्मानित। और जापान में आयोजित पुरुष अंडर 18 एशिया कप के लिए की गई भारतीय टीम की घोषणा, झारखंड के दो खिलाड़ियों को टीम में मिली जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे हजारीबाग संवाददाता।
1: केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करीब 107 करोड़ की लागत से हजारीबाग शहर की महत्वाकांक्षी परियोजना भारत माता चौक से लेकर सिंदूर बाईपास तक लगभग 9.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का पूर्ण निर्माण किया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने बताया,
2: उसको भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता और ये जो एरिया है आज पूरा हजारीबाग आप देखिएगा तो आकर के इसी से कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं पर, तो यहाँ से लेकर के नगवा तक में तो जितना बाईपास हुआ है इस फोर लेन से लेकर उस फोर लेन तक अभी किया जा रहा है, 10 किलोमीटर का है और लगभग 100 करोड़ की ये जो है योजना है।
1: हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़

0: एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, सड़क सुरक्षा जो हेलमेट है, सीट बेल्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, कैसे रोड पर चले, क्या नियमों का पालन करें, यही सब की जानकारी लोगों को दी गई और फाइन भी काटा गया। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले 2-3 सालों में जहां लोग जीरो हेलमेट पहनते थे, अब परिवर्तन आ रहा है, आने वाले समय में 100% लोग हेलमेट जरूर पहने।
1: एशिया का सबसे गर्म बरकट्ठा सूर्य कुंड को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने क्षेत्र भ्रमण किया है। क्षेत्र भ्रमण करने के बाद हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने बताया,
2: सूरज कुंड को अभी जिस जिला परिषद के द्वारा उसको संचालन किया जा रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है जिसको जिसमें लगभग लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, तो स्थानीय लोगों के साथ और वहाँ के मुखिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी के साथ मिलकर के ये कुछ बातें तय हुई है, जिसमें हम लोगों को वहाँ पर बहुत सारे कार्यों को कराया जाना है ताकि और पर्यटक आ सके और पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर वो अपनी जगह बना पाए। इसके अलावा पाताल लोक धाम का भी भ्रमण किया गया। यहाँ पर किसी भी विषम परिस्थिति में भी यहाँ पर 24/7 बहुत ही अच्छा पानी आता है कि सभी लोग यहाँ से पानी पीते हैं और इस पानी की अपनी एक ऐतिहासिक मान्यता है। हम लोगों के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इस चीज़ को भी संज्ञान में लाया गया है और जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को यहाँ पर ठीक कराया जाएगा, स्नान घाट बनाया जाएगा, इसके अलावा चेंजिंग रूम बनाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की खपत कम करने के आह्वान का देश में तत्काल और व्यापक असर दिखा है। हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा चार पहिया वाहन छोड़कर मोटरसाइकिल से कार्यालय आना जाना शुरू किए हैं। इनका कहना है
3: कि जहां तक हो सके हम लोगों को बचत करनी चाहिए, विशेषकर वैसे संस्थानों पर जो हम आयात करते हैं, पेट्रोल, सोना आदि आदि। तो मैंने तय किया है कि जहां कहीं संभव हो अपने वाहन से चलूं, हमारे सुरक्षाकर्मी हमारे साथ चलते हैं। क्षेत्र भ्रमण भी आज से बाइक से ही कर रहा हूँ और काले हम इसी से आ रहे हैं। राष्ट्र बचाने के लिए तेल नहीं, राष्ट्र रहेगा तो मेरा हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, मैं महापौर रहूंगा। तो राष्ट्र महत्वपूर्ण है और राष्ट्र उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए हम सबों को, हर भारतवासियों को राष्ट्र प्रथम मानकर काम करना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। जब भी इन्होंने देश हित में लोगों से आह्वान किया तो लोगों ने उनकी अपील का स्वागत किया है। कुछ ऐसा ही नजारा हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
4: अभी आप सुन रहे थे हजारीबाग जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। एक रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की युगल आवाजों में कुछ फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं वक्त की आवाज फिल्म के इस नगमे से। आवाजें हैं किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की, गीतकार हैं देवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

हत्या फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी। अगला गीत आइए सुनते हैं दिल जला फिल्म से। आवाजें हैं जी हाँ किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार नदी बप्पी लाहिरी।

मजाल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए हिम्मत और मेहनत फिल्म से। गीतकार हिंदीवर और संगीतकार बप्पी लाहिरी।

हिम्मत और मेहनत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। शब्द रचना इंदिवर की थी और तर्ज बप्पी लहरी की। इसी नगमे के साथ ही अब आज का एक रंग कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत वार्ता जल जंगल और जीवन, एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार हैं पूनम सहाय, शांतिपुरी डाल्टनगंज से।

भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति और मानव जीवन का गहरा संबंध सदियों से बना हुआ है। यहाँ जल, जंगल और जीवन केवल पर्यावरणीय तत्व नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के आधार भी हैं। इन तीनों के बीच संतुलन ही देश की समृद्धि और स्थिरता को बनाए रखता है। प्रकृति ने मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए अनेक अमूल्य संसाधन प्रदान किए हैं, जिनमें जल, पानी और जंगल यानी कि वन सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही तत्व न केवल मानव के अस्तित्व के आधार हैं, बल्कि पृथ्वी पर समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जीवन चक्र को भी संतुलित बनाए रखते हैं। जल, जंगल और जीवन का संबंध इतना गहरा है कि इनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं। जल का महत्व, जल जीवन का मूल आधार है और मानव शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है और इसके बिना जीवित रहना असंभव है। जल का उपयोग पीने, कृषि उद्योग, स्वच्छता और ऊर्जा उत्पादन जैसे अनेक कार्यों में किया जाता है। नदियाँ, झीलें, तालाब और भूजल हमारे लिए जल के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और प्रदूषण के कारण जल संसाधनों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। जल का अंधाधुंध दोहन और जल स्रोतों का प्रदूषण भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जंगल का महत्व, जंगल पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वन जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख आधार है। यहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पतियाँ निवास करती हैं। जल वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जल स्रोतों को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा आदिवासी और ग्रामीण समुदायों का जीवन जंगलों पर निर्भर करता है। वे जंगलों से भोजन, औषधि, ईंधन और आजीविका प्राप्त करते हैं। जल, जंगल और जीवन का पारस्परिक संबंध, जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और जल स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, जबकि जल जंगलों के विकास और संरक्षण में सहायक होता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो वर्षा कम होगी, जल स्रोत सूख जाएंगे और अंततः जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसी प्रकार यदि जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे तो जंगल भी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जल, जंगल और जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बात हमारे देश भारत की जाए तो भारत में नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा आदि न केवल जल का स्रोत है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र भी है। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में जल का महत्व और भी अधिक है। सिंचाई, पेयजल, उद्योग और बिजली उत्पादन में जल की अहम भूमिका है, लेकिन आज जल संकट, भूजल का अत्यधिक दोहन और नदियों का प्रदूषण और एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। वही भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसके साथ ही लाखों लोग, विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगलों पर निर्भर है। साथ ही यह भी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत के वन जैव विविधता से भरपूर है। हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंदरवन और मध्य भारत के वन अनेक प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों का घर है। जंगल जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, वर्षा को प्रभावित करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।

इसके साथ ही लाखों लोगों विशेषकर आदिवासी समुदायों की आजीविका जंगल पर निर्भर है। जब बात जंगल जीवन की हो रही है तो हमारा राज्य झारखंड भी प्राकृतिक संसाधनों के से समृद्ध एक राज्य है, जहाँ जल जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अत्यंत जीवंत रूप से दिखाई देता है। यहाँ के घने वन, बहती नदियाँ और आदिवासी संस्कृति मिलकर एक ऐसा पर्यावरणीय संतुलन बनाते हैं जो न केवल राज्य की पहचान है बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। झारखंड में अनेक नदियाँ जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल, बराकर आदि बहती हैं, जो यहाँ के लोगों के जीवन और कृषि का प्रमुख आधार हैं। जल का उपयोग खेती, पीने, पशुपालन और छोटे उद्योगों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी तालाब, कुएं और झरने जल के मुख्य स्रोत हैं। जल के बिना यहाँ की कृषि और जनजीवन की कल्पना करना कठिन है। झारखंड को वनों की भूमि कहा जाता है। यहाँ शाल, शखुआ, महुआ, तेंदू, बांस जैसे पेड़ों की भरमार है। ये जंगल न केवल पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं बल्कि यहाँ के आदिवासी समुदायों की आजीविका का मुख्य साधन भी हैं। महुआ के फूल, तेंदू पत्ते, लकड़ी और जड़ी बूटियाँ लोगों के जीवनयापन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। जंगल यहाँ की संस्कृति, परंपरा और त्योहारों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। झारखंड के आदिवासी समुदाय जल और जंगल को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनकी जीवन शैली प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने पर आधारित होती है। सरहुल, कर्मा जैसे त्यौहार प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और आभार को दर्शाते हैं। वे जंगल और जल स्रोतों की रक्षा को अपना कर्तव्य मानते हैं। झारखंड में जल और जंगल एक दूसरे के पूरक हैं। जंगल वर्षा को आकर्षित करते हैं और नदियां व झरनों को जीवित रखते हैं। वही जल जंगलों को हरा भरा बनाए रखता है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो जल स्रोत सूख जाएंगे और इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ेगा। इस प्रकार यहाँ का जीवन इन दोनों पर निर्भर करता है। वर्षों में खनन, औद्योगिकरण और वनों की कटाई के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर खतरा बढ़ा है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं और जंगलों का क्षेत्र घट रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलन और स्थानीय लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आज के आधुनिक युग में विकास की दौड़ में ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ा दिया है। वनों की अंधाधुंध कटाई, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। इन समस्याओं के कारण न केवल पर्यावरण असंतुलित हो रहा है बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ता जा रहा है। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। संरक्षण के उपाय, जल और जंगल को बचाने के लिए जागरूकता को और संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग और सरकारी नीतियों का सही क्रियान्वयन जरूरी है। साथ ही स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही इन संसाधनों की रक्षा संभव है। जल और जंगल के संरक्षण के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे। वर्षा जल संचयन, जल का सीमित उपयोग, वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर रोक और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। जंगल और जल के संरक्षण के लिए सरकारी पहल, सरकार ने जल संकट को देखते हुए कई योजनाएं शुरू की, जैसे जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अटल भूजल योजना के माध्यम से भूजल स्तर को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तालाब, कुएं व जलाशयों के पुनर्जीवन पर काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वनों की सुरक्षा के लिए सरकार वन महोत्सव, हरित भारत अभियान, ग्रीन इंडिया मिशन और CAMPA योजना जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। इन योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और कटे हुए जंगलों की भरपाई की जाती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय वन नीति के माध्यम से जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा की जा रही है। सरकार स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे परियोजना और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से

0: पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रही है। स्कूलों और गाँव में पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग स्वयं भी प्रकृति की रक्षा में भाग लें। निष्कर्ष, सरकारें जल, जंगल और जीवन की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं है। जब तक आम जनता इन प्रयासों में सहयोग नहीं करेगी तब तक पूर्ण सफलता संभव नहीं है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जल बचाए, पेड़ लगाए और पर्यावरण की रक्षा करें। भारत में जल, जंगल और जीवन का संबंध अत्यंत गहरा और अविभाज्य है। इनका संरक्षण ही देश के उज्जवल भविष्य की कुंजी है। यदि हम इन प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और संरक्षण करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियाँ के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उजाले की ओर के अंतर्गत वार्ता जल, जंगल और जीवन, एक अभिन्न संबंध। वार्ताकार थी पूनम सहाय, शांतिपुरी डाल्टनगंज से।

आकाशवाणी के ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

आप मुझे अच्छे लगने लगे, फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी उदित नारायण और साथियों की, शब्द रचना देव कोहली की थी और इसकी धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम की अगली पेशकश है आरजू फिल्म से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, आनंद बख्शी के बोल हैं और अनु मलिक का संगीत है।

बाजीगर फिल्म का गीत सुनिए। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत से सवारा है अन्नू मलिक ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सरहदे कार्यक्रम के तहत भी आइए सुनते हैं कुछ और फिल्मी नगमे।

बेटा फिल्म का गीत सुना अभी आपने, आवाज़ अनुराधा पौडवाल की थी, गीतकार थे समीर और संगीतकार आनंद मिलन। कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, आवाज़ कुमार सानू की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रॉफ।

दीवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज कुमार सानू की थी। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। इसी नगमे के साथ ही अब आज का सरहदी कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया आप बने रहें हमारे साथ।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
6: मौसम विभाग के अनुसार

0: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले दो से तीन दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola affected countries. India Africa Forum summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
3: America and India truly are working as natural partners. We complement each other.

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीराजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खतरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासर मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकतदार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीराजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमरीका फितरी शराकतदार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने

0: और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और एलपीजी की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। एलपीजी की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासिरा मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज़्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफ़र किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
2: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफर के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अलाक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जाँच और अवामी सेहत के इकदामात के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशबीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफ़र पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तहकम करने और लाखों की किसानों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक्कद होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक्कद करने पर गौर खोज किया गया जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस

0: बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहां की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरतेहाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खुसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अलाक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्लह महाज़राई में आम शहरियों के तहफ़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा हरीश परवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है उन मामलों का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलों हैं। जनाब हरीश ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारें। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से इख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिल कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरकी खित्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टो डोलाइस ने आज मुंबई में कौमी

0: स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज वो वसीतर मशरकी बहरे अरब और मशरक़ वस्ती के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज करेगी। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिर खास सप्लाई मौजूद है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह है विविध भारती। आज की फनकार कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम न

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म वीर जारा आदित्य चोपड़ा ने ही लिखी थी। और इसे निर्देशित किया उनके पिता यश चोपड़ा ने।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां

जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है। प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है, और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly, coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थी रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था लिटरली।

0: तो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। पेश खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आवाज की दुनिया के दोस्तों को मोहम्मद फखरुल हसन का

दयावान फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की। नगमा निगार थे अज़ीज़ कैसी और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की अगली पेशकश है लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से। आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है और इसकी तर्ज बनाई है आनंद मिले।

प्रेम गीत फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। आवाज़ जगजीत सिंह की थी, शब्द रचना इंदिवर की थी और इसकी धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। अगला गीत आई सुनते हैं भीगी पल के फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सवारा है जुगल किशोर।

भीगी पलके फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। गीत लिखा था एमजी हशमत ने और इसकी तर्ज बनाई थी जुगल किशोर ने। अगला गीत आई सुनते हैं गंगा जमुना सरस्वती फिल्म।

दोस्ताना फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगला गीत आइए सुनते हैं अमर फिल्म से। आवाज़ लता मंगेशकर की है, नगमा निगार हैं शकील बदायूनी और मौसीकार

हम दोनों फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, साहिर लुधियानवी के बोल थे और जयदेव का संगीत था। अगला गीत आई सुनते हैं गज़ल फिल्म से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा है मदन मोहन।

0: गज़ल फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। अलग अलग लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत। आवाज़ लता मंगेशकर की है, नगमा निगार हैं आनंद बख्शी और मौसीकार आर डी वर्मन।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

अलग अलग फिल्म का नगमा भी आपने सुना। आवाज लता मंगेशकर की थी, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी वर्मन। और यह है रजनीगंधा कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म क्रांति से। आवाजें लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे।

इसी नगमे के साथ ही अब आज का रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने की मोहम्मद फखरुल हसन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।